0: कमाई होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
1: पूरा देश मर्माहत है। और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं, अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत है। जो ऐसा काम किया है, प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध, पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
2: अरे हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
3: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक कन्वर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
4: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ, और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
5: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है, हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे।
1: And with that, we'll slip in a short break. On the other side, we'll get you another case of alleged dowry death. Stay with us.

0: अनसोल्ड टू हिंदुत्व।
1: चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते।
2: इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है, हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे।
0: And with that, we'll slip in a short break. On the other side, we'll get you another case of alleged dowry death. Stay with us.

0: क्या स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्थोर मसाला।
3: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
4: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
5: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
6: Gender parity to be reflected. While we choose leadership as well.
7: It's also important that how they are reshaping the industries.
8: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
3: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
10: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।

0: biggest development came when the Trust General Secretary Champath Rai and Trust member Dr. Anil Mishra stepped down amid the ongoing probe. While neither has been named as an accused in the FIR, the resignations came as scrutiny intensified over the trust oversight mechanisms. So far, the police has arrested all 8 accused that have been named in the FIR. Those arrested include Lovkush Mishra, Anukalp Mishra, Avinash Shukla, Ram Shankar Mishra, Ram Shankar Yadav alias Tinnu Yadav, Manish Yadav, Subhash Chandra Srivastava and Karunesh Pandey. Investigators say several of the accused, who are also a part of the Temple Trust, were directly involved in handling and counting temple donations, while others allegedly facilitated the operations. The FIR includes allegations related to criminal breach of trust, theft and misappropriation of donations. The investigation is now moving beyond those arrested. The SIT is examining whether supervisory failures or institutional lapses enabled the alleged theft to continue unchecked despite repeated warnings. Reports indicate investigators are scrutinizing the role of senior functionaries and reviewing internal systems governing donations, security and accountability. Officials have indicated that if evidence emerges, further action cannot be ruled out.
1: सब कुछ है लेकिन निर्णय के बाद ही कुछ कहेंगे जो कसर होगी फैसले के बाद आगे जो बाकी है वो और हो जाए
0: The trust has maintained that devotees' faith must remain paramount and has assured that donations and valuables are secured. At the same time, the temple trust says that it will fully cooperate with the investigation. With resignations at the top, all 8 accused behind bars and the SIT widening its probe, the spotlight now remains firmly on whether accountability will stop with those arrested or extend further up the chain. Bureau Report, NDTV. All right, let's get you more breaking news coming in. Updates with regard to the temple row and the meeting that will take place today. Breaking news coming in. Priyank Kharge, who's a Karnataka Home Minister, has weighed in on the Ram Temple donation row. Priyank Kharge has in fact made a big claim saying that I am sure that some funds must have gone to RSS as well. This is the Karnataka Minister speaking on the controversy. Let's first listen in and then we get in my colleague Threshri for more on this.
2: Are Chaukidar Kur Chore? Who kya punishment they get? Who are they to seek punishment? Why did they wait for so long? Unke bhai sa bhai log hi kiye na ye sab. As if they don't know. In fact, I'm 100% sure some funds must have gone to them also.
0: Tejshri Puradre joins me live on the broadcast. Some very serious charges, Tejshri, that Priyank Kharge has actually leveled, saying that I'm sure some of the funds must have actually gone to the RSS.
3: Well, absolutely very severe and sensational allegations leveled up by Karnataka Congress leader Priyank Kharge, who goes on to say that the funds were routed to RSS. And Gauri, we see this is not for the first time, you know, that the Congress leaders have been making such kind of allegations in the past few days, since the time when the controversy has come to light, say it be the Samajwadi Party or for that matter, the entire opposition has been raising guns at the BJP. And in fact, yesterday when Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray group also held a Ram Raksha movement and agitation movement there in Dadar in front of Hanuman Temple yesterday. Uddhav Thackeray also in fact made serious allegation. He also in fact stated that these funds, the large scale alleged donation theft must have been used by the BJP to lure the MPs and the MLAs to get them to the NDA. So such kind of allegations have been levelled up by the opposition parties. But this sensational charge coming in by Priyank Kharge on a day when the trust is going to hold a very crucial meet amidst all these allegations leveling up Champath Rai and Anil Mishra's resignation. So that is why this statement comes to be very, very important. Needs to be seen, you know, that how RSS actually responds to it, because we have seen that how a couple of days back RSS finally responded, came out and gave its first official response to this entire controversy. But now after this meeting, what all happens, that is also very much important to see. Back to you.
4: All right, I'm going to leave it there. Thanks much, Tejshree. I'm going to keep coming back as and when there are more updates coming in. Viewers, in fact, speaking of the politics around this entire row, that has peaked. You have BJP versus the opposition parties speaking in terms of this issue. BJP has, in fact, gone on record saying that those who are raking up this issue, bringing in Bhagwan Ram, essentially are anti-Hindu. Opposition parties on their end have been saying, well, big fish are yet to be caught. You have smaller people, insignificant people who are really in the dock in the investigations, even as the big faces have not come out. Speaking on the entire politics, BJP President Nitin Naveen, who was in Uttar Pradesh, has accused the opposition of being both anti-Hindu and claimed that it has repeatedly questioned faith with regard to Bhagwan Ram. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath had also said that opposition is not just anti-Hindu but also anti-India, how they are raking up this entire issue and, in fact, the politics around it. Speaking of politics and hitting back, Shiv Sena UBT Chief Uddhav Thackeray, in fact, accused the government of misusing Hindutva and said that looting Hindus are in power, that those looting Hindus are in power, and calling the alleged temple theft as an insult to Hindutva. So this is an issue that is now likely to only escalate, viewers. Politics on both sides is escalating, and that is something that is going to play out through the course of the day as well. Let's listen in to some of those reactions coming in.
5: ये वे लोग हैं जिनके अपनी कोई विचारधारा नहीं, भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
6: चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते।
7: अभी हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
8: इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है, हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे।
2: अरे चौकीदार कुर चोर है, वो क्या पनिशमेंट देंगे? एंड हु आर दे टू सीक पनिशमेंट? व्हाई डिड दे वेट फॉर सो लॉन्ग? उनके भाई साहब भाई लोग ही किए ना ये सब, as if they don't know. In fact, I'm 100% sure some funds must have gone to them also.
9: राम नाम की लूट की तो हमने चर्चा सुनी थी, पर राम के नाम पर डकैती, चोरी और लूट, वो भी भगवान श्री राम के मंदिर में अब सामने आ गई है। अलग अलग तरीकों से चढ़ावे में भगवान राम जी के मंदिर को लूटा गया, जमीन खरीद में सैकड़ों हजारों करोड़ में लोगों के, राम भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे को लूटा गया। सिंधी समाज ने 200 के करीब शिलाएं चांदी की दी, उन्हें भी लूट लिया, और अब ये सामने आ रहा है वृंदावन में भी लूट, बाबा केदारनाथ के घर में भी लूट।
10: मैं पहला व्यक्ति हूं जो अयोध्या के अंदर आम जनमानस के साथ या परिक्षेत्र जिसमें देवीपाटन है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, इनके साथ क्या हुआ, ये सारे विषय में पहले रख चुका हूं और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख रहा हूं। अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर, जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था, और सिक्योरिटी के बहाने कर दिया, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गया, अयोध्या से कट गया। और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला था, तब मैंने बोला था। आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए हैं।
11: सरकार पूरी प्रामाणिकता से कार्य कर रही है, और मैं कह सकता हूं कि यह इसलिए बहुत कष्टकारक है, कहा जाता है भगवान राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर यदि राम के धाम में राम के नाम पर किसी ने पाप किया है तो उसे मुझे लगता है कि शायद साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते।
12: उन तमाम संगठनों का जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं वो भी आपके सामने एक्सपोज हो रही हैं। आज आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने पत्र लिखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Designation of this Champat Rai and Anil Mishra and Govindev Giri. He is here in Ayodhya, and also we got to know that Vishwa Prasanna Tirth Ji Maharaj, he is in Ayodhya. Paramanand Ji Maharaj, he is also in Ayodhya. Anil Mishra, Champat Rai, they are based in Ayodhya, as well as Nitya Gopal Das Ji. He was unwell. He was admitted in a hospital in Lucknow, but 2 days back he was discharged, and now he is in Mari Ram Das Chhavni. So probably Nitya Gopal Das Ji can join this meeting virtually. If we talk about the construction committee chief Nipendra Mishra, sources said that he is on the way to Ayodhya. He is coming from Delhi, and rest of the members, they are also in Ayodhya. So out of 15, there are total 14 members, and probably 12 members will be joining physically this meeting, and 2 will join virtually. Gauri.
1: All right, Ranveer, giving us a complete lowdown of who all will be part of that crucial meeting, and of course, if at all, it will make way for a new temple structure. In fact, Ranveer, I'm going to keep coming back to you as and when there are updates from this big story. But, you know, viewers, let's also understand that when the first set of allegations came to light, what exactly were these allegations? They were allegations about possible theft of donations that were offered by the devotees to the Ram Mandir. Whether there were criminal breach of trust, whether there were administrative lapses, whether there was actual lapses with regard to how exactly was this done, the scale at which it happened, how long this happened, those are big questions that everybody is asking. And this report brings you up to speed with some of those big questions that are likely to take center stage in that all-crucial meeting today.
2: What began as an alleged theft of devotees' offerings has now turned into one of the biggest controversies surrounding the Ram Temple administration. The special investigation team is probing how cash and valuables donated by the devotees were allegedly siphoned off for months. Investigators say that the alleged theft was systematic, with prelim findings indicating repeated lapses in monitoring and supervision. The biggest development came when the Trust General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra stepped down amid the ongoing probe. While neither has been named as an accused in the FIR, the resignations came as scrutiny intensified over the trust oversight mechanisms. So far, the police has arrested all 8 accused that have been named in the FIR. Those arrested include Lovkush Mishra, Anukalp Mishra, Avinash Shukla, Ram Shankar Mishra, Ram Shankar Yadav alias Tinnu Yadav, Manish Yadav, Subhash Chandra Srivastava and Karunesh Pandey. Investigators say several of the accused, who are also a part of the temple trust, were directly involved in handling and counting temple donations, while others allegedly facilitated the operations. The FIR includes allegations related to criminal breach of trust, theft and misappropriation of donations. The investigation is now moving beyond those arrested. The SIT is examining whether supervisory failures or institutional lapses enabled the alleged theft to continue unchecked despite repeated warnings. Reports indicate investigators are scrutinizing the role of senior functionaries and reviewing internal systems governing donations, security and accountability. Officials have indicated that if evidence emerges, further action cannot be ruled out.
3: सब कुछ है, लेकिन निर्णय के बाद ही कुछ कहेंगे। जो कसर होगी, फैसले के बाद आगे जो बाकी है, उस और हो जाए।
2: The trust has maintained that devotees' faith must remain paramount and has assured that donations and valuables are secured. At the same time, the temple trust says that it will fully cooperate with the investigation. With resignations at the top, all 8 accused behind bars and the SIT widening its probe, the spotlight now remains firmly on whether accountability will stop with those arrested or extend further up the chain. Bureau Report, NDTV.
1: You know, viewers, there are 2 sides to this story. One, of course, is the administrative lapses and what really happened. and the inquiry, the probes that are currently on. The second and equally important is the politics of it, the Chanda Chori politics that is taking stage. Don't forget, Uttar Pradesh is the next key battleground as well for opposition and BJP, which is why both sides are trading charges. BJP has said that those who are escalating this and making a big political issue out of it are anti-Hindu. Opposition parties have all along said that those that are being caught right now, all eight of them, are small fish, while bigger people have not yet been probed. BJP President Nitin Naveen, who was in Lucknow in Uttar Pradesh, had in fact said that this is nothing but anti-Hindu politics by the opposition. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has also said that it's not just anti-Hindu, but anti-India mindset being showcased by opposition parties. On the other side, Shiv Sena UBT Chief Uttav Thackeray has said that those who are actually looting people in the name of Hindutva are doing huge disservice to the religion. Listen in to some of those latest political reactions coming in on this story.
4: वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
5: चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते।
6: अभी हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। अपना हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोई मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
7: इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है, हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे।
8: अरे चौकीदार कुर चोर है, वो क्या पनिशमेंट देंगे? एंड हु आर दे टू सीक पनिशमेंट? व्हाई डिड दे वेट फॉर सो लॉन्ग? उनके भाई साहब भाई लोग ही किए ना ये सब, as if they don't know. In fact, I'm 100% sure some funds must have gone to them also.
9: राम नाम की लूट की तो हमने चर्चा सुनी थी, पर राम के नाम पर डकैती, चोरी और लूट, वो भी भगवान श्री राम के मंदिर में अब सामने आ गई है। अलग अलग तरीकों से चढ़ावे में भगवान राम जी के मंदिर को लूटा गया, जमीन खरीद में सैकड़ों हजारों करोड़ में लोगों के राम भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे को लूटा गया। सिंधी समाज ने 200 के करीब शिलाएं चांदी की दी, उन्हें भी लूट लिया। और अब ये सामने आ रहा है वृंदावन में भी लूट, बाबा केदारनाथ के घर में भी लूट।
10: मैं पहला व्यक्ति हूं जो अयोध्या के अंदर आम जनमानस के साथ या परिक्षेत्र जिसमें देवीपाटन है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, इनके साथ क्या हुआ, ये सारे विषय में पहले रख चुका हूं और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख रहा हूं। अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था। अब सिक्योरिटी के बहाने कर दिया और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गया, अयोध्या से कट गया। और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला था, तब मैंने बोला था। आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए हैं।
11: सरकार पूरी प्रामाणिकता से कार्य कर रही है और मैं कह सकता हूं कि ये इसलिए बहुत कष्टकारक है। कहा जाता है भगवान राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर यदि राम के धाम में राम के नाम पर किसी ने पाप किया है तो उसे मुझे लगता है कि शायद साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते।
12: उन तमाम संगठनों का जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं वो भी आपके सामने एक्सपोज हो रही हैं। आज आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने पत्र लिखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह किया आयोग से कि साहब वो सबूत देंगे चोरी डकैती कैसे हुई। अरे चोरी कोई और करे, सबूत कोई और दे।
1: Since these allegations came to light on 7th of June, temple administration has now made all processes and procedures far more stricter to ensure that those donation theft allegations are not just addressed, but processes are now much more stringent. What exactly those are, this report tells you.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसो से थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्थर मसाला।
9: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
10: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
11: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
12: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
13: It's also important that how they are reshaping the industries.
14: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
9: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
15: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
9: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर

0: are being shielded. BJP President Nitin Naveen has accused the opposition of being anti-Hindu and claimed it has repeatedly questioned the faith in Lord Ram. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath alleged that the opposition has become anti-India in its bid to oppose the BJP. Hitting back, Shiv Sena UBT Chief Uddhav Thackeray accused the government of misusing Hindutva and said those looting Hindus are in power, calling the alleged temple theft an insult to Hindutva.
1: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं. भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं. उनकी दैविक दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है. वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं. वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं. उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं. तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है. जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं.
2: अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था. और ये लोग कहते थे कि अयोध्या धाम में रामलला पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए, ये भी स्पष्ट नहीं है. और आज उनके मन में इस बात का दर्द है. दोरंगी चाल चलते हैं. और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम पर चर्चा करने का भी हक नहीं है. यही लोग हैं जो भूमाफिया बताते थे प्रभु श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हो रहा था. और प्रभु श्री राम को लेकर के जिस ढंग से इन्होंने टिप्पणियां की हैं, प्रभु श्री राम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे.
3: अरे चौकीदार कुर चोर है, वो क्या पनिशमेंट देंगे? एंड हु आर दे टू सीक पनिशमेंट? व्हाई डिड दे वेट फॉर सो लॉन्ग? उनके भाई साहब भाई लोग ही किए ना ये सब. As if they don't know. In fact, I am 100% sure some funds must have gone to them also.
4: राम नाम की लूट की तो हमने चर्चा सुनी थी, पर राम के नाम पर डकैती, चोरी और लूट, वो भी भगवान श्री राम के मंदिर में अब सामने आ गई है. अलग अलग तरीकों से चढ़ावे में भगवान राम जी के मंदिर को लूटा गया. जमीन खरीद में सैकड़ों हजारों करोड़ में लोगों के, राम भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे को लूटा गया. सिंधी समाज ने 200 के करीब शिलाएं चांदी की दी, उन्हें भी लूट लिया. और अब ये सामने आ रहा है वृंदावन में भी लूट, बाबा केदारनाथ के घर में भी लूट.
5: मैं पहला व्यक्ति हूं जो अयोध्या के अंदर आम जनमानस के साथ या परिक्षेत्र जिसमें देवीपाटन है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, इनके साथ क्या हुआ, ये सारे विषय में पहले रख चुका हूं. और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख रहा हूं. अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था. अब सिक्योरिटी के बहाने कर दिया और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गया, अयोध्या से कट गया. और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला था, तब मैंने बोला था. आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए हैं.
6: सरकार पूरी प्रामाणिकता से कार्य कर रही है और मैं कह सकता हूं कि यह इसलिए बहुत कष्टकारक है. कहा जाता है भगवान राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर यदि राम के धाम में राम के नाम पर किसी ने पाप किया है तो उसे मुझे लगता है शायद साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते.
7: उन तमाम संगठनों का जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं वो भी आपके सामने एक्सपोज हो रही हैं. आज आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने पत्र लिखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह किया. उसे कि साहब वो सबूत देंगे

0: Meanwhile, Abhishek Banerjee spoke to the victim's mother, inquiring about the police investigations and action taken on the family's complaint. Earlier, the minor girl's body was recovered from the area, triggering widespread protests. Police have arrested four people in connection with this case.
1: নমস্কার মাসিমা, কেমন আছেন? আপনারা শক্ত থাকুন, আপনারা শক্ত থাকুন। আপনার কি এক মেয়ে? আপনারা থানায় কমপ্লেন করেছেন? পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এখনো? যে ছেলেটি ধরা পড়েছিল সে কি যুক্ত ছিল এর সাথে?
2: इसमें तुरंत कार्रवाई किया हम लोग, तुरंत कार्रवाई किया है। उनका गार्डियन का साथ भी काल मेरा बात हुआ है। उनका गार्डियन का जो जिस उनका जो डिमांड नहीं, लेजिटिमेट जिनका जो सुझाव था, उम्मीद था सरकार के ऊपर, सरकार पूरा करना चालू कर दिया। चार आदमी के खिलाफ एफआईआर हुआ है, दो को अरेस्ट किया, तीन को डिटेन किया हम लोग, उनको इंटरोगेशन चल रहा है, बाकी दो की भी हम लोग अरेस्ट करूंगा और कैपिटल पनिशमेंट भी होने के लिए जो करना चाहिए कहूंगा। पिछले टाइम पुलिस के हर इश्यू में पुलिस को काम करने के लिए रुकावट था, पुलिस को काम करने के लिए इजाजत नहीं था, सब काम राजनीति से आधारित था। हम लोग तमन्ना को 13 आदमी को तुरंत गिरफ्तार कर दिया। यहाँ भी कुछ देख लीजिए, बड़ा एक्शन होगा।
3: दीदी जाने के लिए तैयार थी लेकिन वो लोग जाने नहीं दे रहा है, पुलिस देके बैरिकेड करके रखा है। ये गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। अभी बीजेपी का 2 महीना का जो रूल हुआ उसमें इतना सारे रेप हुआ, अर्जीगर में रेप हुआ, बिहला ससुना में रेप हुआ, बारीपुर में रेप हुआ, माइनॉरिटी लड़की का पर रेप हुआ। ऐसा ऐसा होगा, इसको प्रोटेस्ट तो हम लोग करेंगे ही, हम लोग अपोजिशन है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ममता जी को निकालने नहीं दिया, ये नहीं चलेगा, बीजेपी का तानाशाही नहीं चलेगा।
4: ये क्या चल रहा है बंगाल में, ये क्या चल रहा है कोलकाता में, क्या चल रहा है? आप सबको पता है बारुईपुर में क्या हुआ। हम एक घंटा पहले यहाँ से गए, आपको हम बोले थे कि विमानदा का एरिया है, विमानदा जरूर जाएंगे। तो दीदी ने, दीदी तो मास लीडर है, आज का बात नहीं, दीदी कब की, कितने बार का एमपी है, कितने बार का वो सेंट्रल मिनिस्टर थे, कितने बार का वो चीफ मिनिस्टर थे, वो तो प्रो पीपल मास लीडर है ही। तो वो सोचे थे कि वो जाएंगे बारुईपुर में, इतना हादसा हुआ, इतना घिनौना हादसा हुआ, तो वो जाने के लिए सोचे थे। बस ये क्या हाउस अरेस्ट करके रखा है, ये क्या नजरबंदी करके दीदी को वो रुक पाएंगे, क्या सोच रहे हैं ये लोग?
5: रास्ता में आके घूमती है, कौन हाउस अरेस्ट करेगा? उनको भी ना अंडा अंडा खाना पड़े, इसलिए पुलिस की पोस्टिंग किया गया।
0: Slip in a short break. When we return, Iran begins a procession through Tehran for the funeral of its late Supreme Leader Khamenei. We bring you a ground report.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसो थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्थर मसाला।
10: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
11: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
12: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
13: Gender parity to be reflected in while we choose

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों, थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा प्योर मसाला।
10: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
11: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
12: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
13: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
14: It's also important that how they are reshaping the industries.
15: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
10: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
16: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: participate in Punjab Congress programs where he's present in his capacity as the state party chief. As per sources, former cabinet minister and MLA Pargat Singh, along with a few other MLAs, has left for Delhi to convey the concerns of Channi Randhawa faction to the Congress High Command, despite senior Congress leader Bhupesh Baghel visiting Chandigarh in an effort to resolve the dispute. The faction's decision to directly send its leaders to the party high command in Delhi is being viewed as a significant escalation of the internal rebellion. We're joined by Gurpreet on this. Gurpreet, before we go to Gurpreet, some more details as far as this faction is concerned. As per sources, former cabinet minister and MLA Pargat Singh, along with few others, have in fact left for Delhi to convey the concerns as far as the internal party disputes are concerned of the Channi Randhawa faction to the Congress High Command, despite senior Congress leader Bhupesh Baghel visiting.
1: ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਔਰ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਮ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ।
2: ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਰ,
1: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? सुनिए आप,
3: लेकिन चन्नी साहब तो ओपनली डाल रहे हैं कि उसी मीटिंग को कंटिन्यू करा मैंने। चन्नी साहब तो ओपनली फोटो डाल के कह रहे हैं मोरिंडा की बैठक को कंटिन्यू किया, वो बैठक आपके खिलाफ थी।
1: कहाँ लिखा
3: उन्होंने? लिखा है उसमें
4: कंटिन्यूस।
1: नो नो नो,
3: दोबारा फोटो डाली सर उन्होंने।
1: आपने क्या लिखा? उन्होंने क्या कि मोरिंडा की मीटिंग को कंटिन्यू?
3: हाँ, उन्होंने लिखा है कि वो दिन की बैठक
1: अर्लियर मीटिंग। सुनिए सुनिए, उन्होंने पंजाबी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा होगा, मेरे को नहीं पता। सुनिए, दूसरी बात, जो मोरिंडा मीटिंग थी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीओके की मीटिंग थी। नहीं, वो मोरिंडा मीटिंग के बारे में भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि मोरिंडा मीटिंग हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय चन्नी साहब के घर में थी, जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं। बहुत से लोग उनका स्वागत करने गए, बहुत से लोग उनको मिलने गए, जो 100 लोग नहीं मिलने गए, हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी मिलने जाएं। अब आपने तो मोरिंडा मीटिंग को बता दिया कि जैसे पीओके की मीटिंग थी, ऐसा मत कीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है, वो मीटिंग भी कांग्रेस की मजबूती के लिए थी और आज दी मीटिंग भी जेडी हुई है कांग्रेस पार्टी की मजबूती वास्ते। एक दो दिन,
3: लेकिन सर आपके बिना मीटिंग हो रही है सर।
1: एक दो दिन सुनने
4: में आया,
1: एक दो दिन तुसी देखोगे कि कांग्रेस पार्टी के सब लीडर एक मंच पे होंगे। तुसी तो मीडिया ने तो कल ही चला रखी,
5: यानी सर अगली बैठक तक
1: मीडिया ने तो कल ही चला रखा है कि चन्नी साहब दिल्ली चले गए। चन्नी साहब तो इतने,
4: लेकिन सुन दे
6: लीडर तो चले गए
4: राजा जी, सुन दे आपको छोड़ दे और सारे बैठक के अंदर मौजूद थे, आप भी चले जाते तो आज ही इकट्ठे।
1: आप भाई साहब, आपका तो ना लड़ाने का मन है हमें, अगर ना भी मल के वो जो जो जो एक मिनट, सब लीडर बाजवा साहब कहाँ थे, सोनी साहब कहाँ थे, राणा केपी साहब तो कहाँ थे, अरुणा चौधरी जी कहाँ थे? मेरे कहने का मतलब, मेरे पास आपकी हर चीज का जवाब है।
4: कुछ लोगों के नाल थोड़ी गल भी हुई है कि
1: गल नहीं, इनमें से जो हमारे वरिष्ठ लीडर हैं उनके साथ सुबह मेरी बैठक हुई है और हम सब लोग इकट्ठे हैं। मैं इंटरनल जो हमारा पारिवारिक अगर कोई बात है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस परिवार इकट्ठा है और प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, आप इसको खामखा विवाद ना बनाएं कि आज मीटिंग वहां है, आज मीटिंग वहां है। मीटिंग निरंतर होगी। आज आप बता देंगे राजा के घर में भी बैंस साहब और मोहित महिंद्रा और इन लोगों की मीटिंग हुई, ऐसा मीटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं। अब हम खड़े होंगे, फोटो खींचेगी जाएगी, तो कहने का मतलब लड़ाई नहीं है,
4: वो 100%
1: अब सुनिए, आप खराब कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि आपको किसी ने भेजा है कि आपने लड़ाई दिखानी है, कवर अप नहीं। सुनिए, किसी ने स्टेटमेंट दिया नहीं है, तुम गलत बात कर रहे हो। चन्नी साहब का स्टेटमेंट दिखाओ, एक मिनट सुनिए, चन्नी साहब एक मिनट सुनिए, सुनिए एक मिनट, मेरे को उसका जवाब देने दो। एक मिनट, चन्नी साहब के घर में बैठक हुई,

0: और जो संस्थाएं हैं, जो सरकारें हैं, वो इस पे चिंता करते हुए जो जख्म हरे हैं उनको भरने की कोशिश करेंगी।
1: के साडे वास्ते, पंजाबियों वास्ते, सिखां दी आवाज बुलंद करन वाली फिल्म जिहड़ी है, एक उस बंदे दी जिंदगी दे उत्ते फिल्म है जिस बंदे ने मनुखी अधिकारां लई काम किया, सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी ने। साडी ही फिल्म ते क्यों पाबंदी लाई गई?
2: बताया जाता है, कहा यह जाता है कि ये मूवी पंजाब में ह्यूमन राइट वायोलेशन को लेकर एक व्यक्ति की लड़ाई पर है। परंतु जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ह्यूमन राइट वायोलेशन की आड़ में किस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां जो कि पंजाब में 80 और 90 के दशक में चल रही थी, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही थी, जो सेपरेशन का मुद्दा जिस तरीके से वहां पर उठाया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं सिंपथाइज करने की कोशिश की गई है। उस समय के सिटिंग सीएम बेअंत सिंह की हत्या को जिस तरीके से इस मूवी में दर्शाया गया, साफ पता चलता है कि वॉयलेंट एक्टिविटीज को इस मूवी के अंदर सिंपथाइज किया गया, एक विक्टिम की तरह आतंकवादियों को दिखाने की कोशिश इसमें की गई है। इसी को लेकर मैंने एक शिकायत आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास भेजी है और आग्रह किया है कि इस मूवी के डायरेक्टर हनी तेहरान, कलाकार दलजीत दोसांझ व अन्य कलाकार, साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, BNS और UAPA की धाराओं के तहत इनके ऊपर FIR दर्ज हो।
3: Let's shift to some breaking updates coming in from West Bengal. A three-member delegation of TMC, including Biman Banerjee, Dola Sen and Pratima Mondal, left from TMC chairperson and former chief Mr. Mamata Banerjee's residence to Baruipur. The visit follows public demonstrations in the region triggered by tragic rape and murder of a 11-year-old girl in Baruipur, and a big comment also being made by a Bengal minister on the incident and on Mamata Banerjee's potential visit. Agnimitra Paul of the BJP says will not allow Mamata Banerjee to visit Baruipur. She also went on to say won't allow Mamata to go there and play politics. Let's listen in to what exactly Agnimitra Paul has said.
4: 15 साल तो जाने का टाइम नहीं ये मिला ममता बनर्जी को। 15 साल तो बहुत घटना हुआ ममता बनर्जी, 15 साल इंटू 365 डेज इंटू 12 इंटू 60 मिनट्स, हर मिनट में बलात्कार हुआ, आपको तो टाइम नहीं मिला। आपको जाने नहीं देंगे, राजनीति करने नहीं देंगे, आप जाके वहां का पब्लिक को इंस्टिगेट करेंगे, सरकार के विरुद्ध भी इंस्टिगेट करेंगे।
3: वी हैव ऋतिक जॉइनिंग अस। ऋतिक, अर्लियर टीएमसी हैड इनफैक्ट क्लेम दैट कॉप्स वर प्रिवेंटिंग ममता बनर्जी फ्रॉम मीटिंग द विक्टिम एंड फैमिली मेंबर्स। Now, Agnimitra Paul of the BJP coming out openly to say that she doesn't deserve to go there and that they will not allow Mamata Banerjee to go there and play politics.
5: Well, news just comes in. The three-member delegation led by Dola Sen and others, they have already reached Baruipur, the tension-torn area. Dola Sen, Biman Bandyopadhyay and Pratima Mondal, this trio, have already met the victim father. They have spoken to them, expresses their help or concern over the entire incident. So far, the statement that is coming from Bengal Minister Agnimitra Paul is concerned. We continue to bring this live broadcast from the residence of former Chief Minister Mamata Banerjee. This piece of stretch leading to Mamata Banerjee's residence is Horish Chatterjee Street. As you can see, the fresh barricades have been put in place over here at the entrance of Mamata Banerjee's, the road, Harish Mukherjee Road, Horish Chatterjee Street. And as you can see that the deployment of the central forces over here, and since last evening, heavy deployment of central forces have been done. And we can see the cops of the Kolkata police have also continued to, stationed over here. As per the allegation raised by Trinamool leaders and also Mamata Banerjee, they said that it is and kind of an emergency-like situation, and she is being put in house arrest. And so far, the administrations are concerned, and Bengal Minister.

0: Ministers are concerned, they have said this freshly development or the deployment of corps are not with regard to any kind such kind of situation where Mamata Banerjee is being putting inside house arrest. They said so far it is the residence of former Chief Minister of West Bengal, and over the developing situation in Baruipur, and which is why for the security measures this kind of deployments are being done. So far, we do not know whether Mamata Banerjee would attempt to visit the tension torn area. But since this morning, what we can see, the central forces remain stationed over here, and that has triggered a lot of political row between BJP and Trinamool Congress. Amid a such situation, a delegation led by Dula Sen have already
1: gone to the tension-torn area in the victim and victim family members, is what you're saying. Thank you for getting us all of those important details. As you pointed out, political row is only intensifying over the death of this 11-year-old girl in West Bengal's Baruipur. TMC has accused the BJP of trying to block the chief minister's visit, calling it an attack on democratic rights. Mamata Banerjee alleged she was stopped from meeting the victim's family due to heavy police deployment. Calling the incident shocking, she also raised concerns over women's safety in the state. On the other hand, Chief Minister Suvendu Adhikari said he had spoken to the victim's family, assured strict action against the accused, and reiterated a zero-tolerance policy towards such crimes. He also went on to say that no opposition leader has been stopped from visiting the kin of the victim. Meanwhile, Abhishek Banerjee spoke to the victim's mother, inquiring about the police investigation and action taken on family's complaint. Earlier, minor girl's body was recovered from Baruipur, triggering widespread protests. Police have arrested four people in connection to the case.
2: Namaskar, Mashima, kya hona chahiye? আপনারা শক্ত থাকুন, আপনারা শক্ত থাকুন। আপনার কি এক মেয়ে? আপনারা থানায় কমপ্লেন করেছেন? পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এখনো? যে ছেলেটি ধরা পড়েছিল সে কি যুক্ত ছিল এর সাথে? তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছেন?
3: इसमें तुरंत कार्रवाई किया, हम लोग तुरंत कार्रवाई किया है। उनका गार्डियन का साथ भी कल मेरा बात हुआ है। उनका गार्डियन का जो डिमांड नहीं, लेजिटिमेट जिनका जो सुझाव था, उम्मीद था सरकार के ऊपर, सरकार पूरा करना चालू कर दिया। चार आदमी के खिलाफ एफआईआर हुआ है, दो को अरेस्ट किया, तीन को डिटेन किया हम लोग, उनको इंटरोगेशन चल रहा है, बाकी दो की भी हम लोग अरेस्ट करूंगा और कैपिटल पनिशमेंट भी होने के लिए जो करना चाहिए कहूंगा। पिछले टाइम पुलिस के हर इश्यू में पुलिस को काम करने के लिए रुकावट था, पुलिस को काम करने के लिए इजाजत नहीं था, सब काम राजनीति से आधारित था। हम लोग तमन्ना को 13 आदमी को तुरंत गिरफ्तार कर दिया। यहाँ भी कुछ देख लीजिए, बड़ा एक्शन होगा।
4: शर्मनाक घटना है और गणतंत्र का हत्या कर रहा है, तो हम इसके लिए एकदम प्रतिवाद करते हैं। जो घटना काल मुख्यमंत्री को, प्राक्तन मुख्यमंत्री को जाने नहीं दिया है, ये लोग डरते हैं ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी एक शेरनी है। ममता बनर्जी जो कर सकते हैं, भारत जानते हैं ममता बनर्जी कैसे प्रतिबद्ध करते हैं, इसलिए उसका नाम ही है अग्निकन्ना, प्रतिवादी आंदोलन का। क्यों डर रहे? क्योंकि ममता बनर्जी अगर उधर जाए, इतना हजारों लाखों लोग वहां पे आएंगे, ममता बनर्जी को आशीर्वाद देंगे कि तुम प्रतिवाद करो, हम तुम्हारे साथ है।
5: रास्ता में आके घूमती है, कौन हॉर चार्ज करेगा? उनको भी ना अंडा अंडा खाना पड़े, इसलिए पुलिस की पोस्टिंग किया गया।
6: अ रेप विच हैपेंस अंडर द वॉच ऑफ द ऑपोजिशन बिकम्स अ ह्यूज इशू, एंड राइटली सो। All rapes should become a huge issue until the society and the governments wake up. But if a rape happens under the watch of the BJP government, you put the opposition in house arrest. Why? All rapes are equally horrifying, and they cannot be looked at through the prism of which political party do you belong to.
1: Let's shift our focus to some breaking updates. Pakistan-based LET chief Hafiz Saeed has been named by National Investigation Agency in supplementary charge sheet in connection to Pahalgam terror attack. The NIA file this charge sheet against Pakistan-based

0: रेड वार्निंग फॉर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, घाट रीजन ऑफ पूना डिस्ट्रिक्ट, देन नासिक डिस्ट्रिक्ट एंड पालघर डिस्ट्रिक्ट.
1: Well, at least 13 people have died in the last few days because of the monsoon mayhem in Mumbai. What are some of the big questions that we are asking on the show today? First up, how many more lives will BMC ignore? Because it's completely getting difficult to venture out in the city. Second, why is BMC failing Mumbai miserably at this point of time in this monsoon season? Third, how long will civic apathy continue in the city with various people losing their lives because of failing, crumbling infrastructure? Fourth, why no action after repeated tragedies in the city? And lastly, when will accountability in this state be fixed? Because at this point of time, the questions are only being tossed from one party to the other, and the death toll only increasing, with 13 people losing their lives so far in the last few days in the city of Mumbai because of the incessant rainfall in the city. All right, let's now tell you about all the politics which has intensified over monsoon mayhem in Maharashtra, as Mumbai's monsoon has once again exposed serious questions over civic infrastructure and public safety. At least 13 people have died, that's in total in the last few days, but 6 people have died in a building collapse, while rain-related incidents have also claimed more lives across the city. The opposition has now launched a sharp attack on the Mahayuti government. Congress has alleged that years of corruption in the BMC are now responsible for rain-related deaths. Samajwadi Party MLA Abu Azmi has claimed that he repeatedly raised the issue of illegal constructions in the assembly, further accusing the government of failing to act. Meanwhile, UBT has also questioned who will take responsibility for the 6 deaths in the building collapse so far.
2: Bhai sahab, roz house mein bol raha hu, roz house is baat ko utha raha hu ki sahab, ये जो है ना इलीगल काम को बंद किया जाए. जहां भी इलीगल काम को करने के लिए रिश्वत मिलेगी ना, तो पब्लिक रिश्वत देकर बनाएगी, क्योंकि गरीब लोग हैं.
3: 6 लोगों की एक साथ मौत होना यह दिखाता है कि मुंबई महानगर पालिका का प्रशासन कितना बड़ा गैर जिम्मेदाराना है और लापरवाह है. इसका कौन देगा जवाब कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है?
4: पिछले 5 दिनों में 10 लोगों की मुंबई में हत्या हो गई है और इस हत्या का जिम्मेदार मुंबई महानगर पालिका है. हाई कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करके इमीडिएटली मुंबई महानगर पालिका पे इन 10 लोगों के मरने का केस दाखिल होना चाहिए. बच्चे स्कूल से घर जाते हुए मर रहे, मोटरसाइकिल चलाते हुए लोग मर रहे हैं, बिल्डिंग में रहने वाले लोग मर रहे हैं. मुंबई का टोटल फेल्योर है, मुंबई महानगर पालिका का टोटल फेल्योर है. इसके लिए इमीडिएटली सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए.
5: एक बरस में जो पाउस जोर से गिरता है, इतना गिरा, इतना बरस में कभी इतना गिरा नहीं है. और जो रोड पर जो झाड़ होते हैं, झाड़ भी गिर गए हैं, वो भी इतने कभी गिरे नहीं. जो पहले थे इन्होंने क्या किया, मैं भी उधर था 85 में, मैं काउंसिलर था, मेरे को मालूम है. लेकिन किसको उंगली दिखाना, ये अच्छा नहीं है.
6: नहीं, ऐसा कोई नहीं. ये तो झाड़ जो है वो बहुत पुराना झाड़ है. जो चेम्बूर में और मानकुर में ये साइड में जो झाड़ गिर रहे हैं, वो बहुत पुराने झाड़ है. 50 साल के पुराने झाड़ है. वो झाड़ का सर्वे करना बहुत ज़रूरी है. वो सर्वे करके जितने भी झाड़ है उनका सर्वे करके, उनका कटिंग करके, उनको ये रखना चाहिए. आज मानकुर में जो झोपड़पट्टी गिरा है, झोपड़पट्टी में 6 आदमी का जो मौत हुआ है, वो बहुत निषेधार्थ है, बहुत बुरा हुआ है. तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एसआरए के माध्यम से जल्द से जल्द झोपड़पट्टी का पुनर्विकास होना चाहिए.
1: All right. To talk to us more about the Mumbai monsoon mayhem, I'm now being joined by Anuj. He's joining me live from Mumbai. Anuj, holding that umbrella there. Of course, it's raining. Talk to us more about what the situation is on the ground. Why is the BMC failing the residents of Mumbai so badly, with the death toll only rising?
7: At this point of time, the rain has come down to a drizzle, and you know, since afternoon, that is since 1 or 2 p.m., the intensity of the rainfall has gone down. But what has been a staunch reminder

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: You know, I was just waiting to tell you about, and it's shameful to once again keep on going about the stories that are coming in from Mumbai, our maximum city financial capital. And before I could document what all has happened today, there is breaking news coming in, which is even more shameful. One more collapse as far as infrastructure is concerned. A slab from an under-construction project has collapsed opposite Metro Mall in Borivali, Mumbai, causing several vehicles underneath it. Now, rescue operations are going on to retrieve the people from the debris. In fact, at this moment, for the past few hours, strong winds are blowing across the suburbs. There are no casualties, thankfully, in this incident, but it is just Ram Bharose. I mean, look at this, what is happening in Mumbai every single day. Every single day, the monsoons which are supposed to be celebrated are only raining in death and misery. And thankfully in this, nobody has died. Otherwise, every single day there is a loss of life. And it happened today as well. I'll get to those stories, but this is the latest coming in. A slab from an under-construction building has collapsed in Borivali. And it has caused destruction and damage to several vehicles. Let me go across to my colleague Saurabh Gupta, who's joining us with more details at this moment. Saurabh, it seems the rains are back. You are in, you know, under a raincoat. The fact remains that, you know, we keep speaking about these stories ad nauseum, and it seems that we are doing that in vacuum because nothing changes, Saurabh.
1: Absolutely, you know, the cycle remains the same. In fact, what's been adding to the problem in Mumbai is not just the heavy rain, but also the high velocity winds that are accompanying this rain. Now, you can see, of course, I am close to Juhu, where, of course, the winds are very strong. And that, to some degree, is adding to the problems, especially when it comes to loose, you know, material or even, you know, say, weaker buildings, etc. Now, that's what's adding to the problem. Now, of course, there's this Borivali site. There was this site in Mankhurd in the morning. My colleagues have been reporting from there. The seas at this point are also very rough. In fact, I'll ask my camera person to try and show you. The seas are also very rough, and this is an indicator of the strong winds that are accompanying the whole rain. And that's something that obviously is adding to the woes. Now, there has been an advisory that has been put out by the BMC asking people to stay indoors. That's also something that the BMC put out, but by the time it came, many people would have already been at work. But I can tell you, the strong winds that are hitting Mumbai at this point, the high velocity winds that are accompanying the rainfall, which of course many wanted, because remember, otherwise Mumbai was staring at a water crisis. The rains thankfully have come, but they've come with their usual sort of, you know, force. And what's happened is the strong winds have added to the problems. This is India's financial capital. Really, people shouldn't have to lose their lives in this because of a monsoon and high winds. But unfortunately, that's the story from Maximum City. You know, often we use that saying, maximum city, maximum apathy.
0: Right.
1: And yes, fingers are being pointed towards the civic body for apathy.
0: You know, Saurabh, you're right. Monsoon should not be the reason for people to die. I mean, that is what we will have to do. But I have to shift focus at this moment from Mumbai. I wanted to, you know, speak about this story much more, but there is important press conference which is coming in after the meeting in Ayodhya. Let's listen.
2: दीर्घकाल चली और संपन्न हुई. हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वो अत्यंत वेदनादायक है. भगवान श्री रामलला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना. इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की. और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है. हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं. चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है, पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ इसी से हम आहत हैं, किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है, उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए, और स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस, जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है, अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया, उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब तक यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है, उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए, और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। हम लोगों को आप लोगों के सामने यह भी बात बतलानी है कि प्रसार माध्यमों में जो कुछ बड़ा बड़ा हवा सामने खड़ा करके कहा जा रहा है वह कितना सत्य है, इसको समाज को जानना चाहिए। झूठ मूठ की अनेक बातें अनर्गल प्रलाप करते हुए अनेक प्रसार माध्यम हम लोगों के सामने रखते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं, इस बात से समाज को सावधान हम करना चाहते हैं। हमें कहा जाता है कि वहाँ पर केवल दान पात्रों में चोरी नहीं हुई, तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है वो रामायण की पुस्तक कहाँ है, और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है, और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं, और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ये पांच तो जिनकी चर्चा चली है वो आपको नमूने के लिए रूप में दिखाने के लिए हम लाए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वो काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे, इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है। और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक SIT की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं, और उसके समय भी आप लोगों के साथ और मिलकर के बात करेंगे। एक बात हम निश्चित रूप से बतलाना चाहते हैं कि चोरी तो चोरी है और उसमें उसके उसकी जो तलाश करनी है वह SIT कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए, और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान में और लेनी चाहिए कि इसको ढाल बना करके इसके पीछे जो संपूर्ण राष्ट्र में हो हल्ला मचाया गया है वो उसके इरादे साफ नहीं है। राम भक्ति के नाम को लेकर के वो लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने स्वयं ये उच्चतम न्यायालय में लिख करके दिया कि राम हुए ही नहीं थे, राम सेतु बनाई नहीं है, इस प्रकार का सब कुछ राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है वह साधारण नहीं असाधारण है, और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है, और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को ये ध्यान में लेना चाहिए, इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। और हम लोग ऐसा पुनः संकल्प करते हैं कि इस राम भक्ति को हम बरकरार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आवाहन करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। ये किया जाने वाला, खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साह ही नहीं बनेंगे। आप सभी का आवाहन है कि आप सब लोग इस कार्य में धैर्य रखें, धीरज रखना चाहिए, न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा, हमें न्यायालय का विश्वास है और हम अपनी राम भक्ति की धारा को अखंड बहाते रहेंगे और राम भक्ति का ज्वार ऐसा ही उठाते रहेंगे जिससे राम राज्य आएगा। तब तक हम थमने वाले नहीं हैं। आप सभी को, राम भक्तों को मेरा प्रणाम, अभिवादन और आवाहन कि अफवाहों का विश्वास न करें, सत्य की जांच होने तक स्वस्थ रहे, समाज में शांतता का वातावरण रखें। आपको कहीं पर भी कोई भी आशंका है तो सीधे कार्यालय में आकर के उसकी पूछताछ करें, हम आपको उत्तर देंगे। वहाँ पर आपको यदि कोई वस्तु आप अधिकृत व्यक्ति है उसको जानने के लिए तो उस वस्तु को दिखाएंगे, और ऐसी 28 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास है। आप विश्वास धैर्य रखें, शांति बनाए रखें और अपनी आस्था को अडिग बनाए रखें।

0: Right, so latest coming in from Ayodhya after a three-hour-long meeting of the Temple Trust. The trust coming out and said Champak Rai has voluntarily resigned. They also said that Champak Rai and Anil's resignation has been accepted, Anil Misra's. They've also come out and in fact praised Champak Rai, saying that he has shown maturity and the SIT's probing, probing the theft. Let's listen in some more to some more reactions.
1: बहुत आग्रही रहेंगे इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं सभी को कष्ट हुआ है राम भक्तों को कष्ट हुआ है अभी इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी जिसका फायदा लोगों ने उठाया तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं कहीं भी कहीं छूटा हुआ है उसको सबसे पहले बंद करना इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा इस जो समाज में बना है माहौल उसके कारण हमारे न्यास की के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग न्यासी लोग मिलकर के ये सब इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और पुनर इस जो अविश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे बंधुओं ये जो श्रीराम जन्मभूमि में दर्शन करते समय जो दर्शनार्थी देते हैं दान करते हैं अर्पित करते हैं उसका हम जो संघ के संघ जो न्यास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना है हम उसको उसी को करेंगे और पारदर्शी रूप से करेंगे सभी को बताया जाएगा बाद में जब हो जाता है क्योंकि बीच में उस तरफ को जानकारी कुछ प्रोसेस में होता तब न कह करके पूरा जब बन जाता है उसको पूरे पारदर्शी ढंग से इस बात को कहा जाएगा दिखाया जाएगा सभी को बताया जाएगा जिससे कि समाज में हमारे इस न्यास के प्रति जो अविश्वास की जो बात जगी है उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूंगा ऐसा मेरा विश्वास है इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा सहकार्य लगेगा साथ में जो मीडिया है उससे भी मेरा निवेदन है कि जो सत्य बातें हैं उसी को प्रसारित करें कुछ पूछना है जो न्यास के लोग हैं उनसे जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं से पूछें आपको सही जानकारी मिलेगी केवल प्रोसेस होते समय उस बात को नहीं बताता जब अंतिम हो जाता है तब उस बात को आपके मीडिया में अवश्य रखा जाएगा आगे भी रहता रखा जाएगा ये आपको मैं निवेदन करता हूं

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
12: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
11: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: about how the police had gone through and killed people extrajudicially. That should be, it's an uncomfortable truth.
1: Mm.
0: But truth be told, that should not be hidden from people. You know, it seems very suspicious. Why would a platform first release and then, you know, take it off?
1: No, but how do you decide whether it is the truth or it is an exaggeration and a dangerous exaggeration? Even let me just give you one of the examples. So some of the clips, and some of the conversation is around two main things. For example, the demonizing of KPS Gill altogether. Yes, some excesses happened, but to demonize him altogether or to talk about the assassination of Beyant Singh almost in a glorified manner, can that be allowed in a film in the interest of free speech?
0: No, a glorification of murder of any person should not be allowed. That is one. Let's be very clear on that.
1: But that is what is being done in the film to those who watched it.
0: Even Punjab police is not seen as an angel even today. You talk to somebody like me, I've been booked by the Punjab police a couple of times.
1: Arre sir, but we are just talking about what the film shows from 1995.
0: They are no angels.
1: What is happening today is very different from what Punjab saw in 1995. Now you're talking about the
0: police. Yes, if it was 1995, I would have been...
1: I'm talking about the police in 1995, which was dealing with insurgency. And yes, while excessive may have happened at that time, and by the way, were punished, including Mr. Khalra himself, whose murder was subjected to a CBI investigation and subsequent prosecution. My question is, can such harsh truths, as you label them, be allowed in a film where you've got a chief minister being assassinated and no critical commentary being made on it?
0: See, if it was glorified, it was wrong. I haven't seen the movie, so I'll not be able to say whether it was glorified or not. But if it was glorified in the movie, it's not done. Anyone's murder should not be glorified. But everyone deserves dignity, respect and justice.
1: But that's the deal. That is the reason why the CBFC is uncomfortable with it. Because such glorification...
0: I don't know that. Like, you know, this was the first question you asked me. And I said, you know, this needs to be put to the CBFC.
1: Hmm. Ravinder Singh Robin? If you've got these two specific instances being quoted, why people are uncomfortable with the film, can they be dismissed out of hand?
2: Okay, Padmaja, let me tell you, Jaswant Singh Khalra did not fight for revenge. He fought for the truth. For the people, those who actually, family, those lost their dear ones, and they didn't know where they gone. And along with that, you know, who has revealed out about the murder of Jaswant Singh Khalsa? Khalra, again, it was a policeman, Kuldeep Singh. He brought the story in. He is the person who, with a heavy heart, went to the media person in 96, and he brought the truth. Same police person. And he was also pictured in the film. He was given a due, jo bhi uska banta tha, he was shown in like that. So far, yes, I have yet to see the picture, first of all. Halanki wo WhatsApp pe zarur aayi hai, lekin abhi usko puri tarah dekhna hai. But yes, glorify again. I'm with Mr. Mann. Glorify of any murder shouldn't be there. But uske liye bhi, Padmaja, we are talking. If film comes out, there are ways. People will certainly decline if agar unhe koi cheez nahi achhi lagti. But that doesn't mean, you know, a strong democracy should not be afraid of memories.
1: Kushal.
2: This is not about a film. It is about whether, you know, difficult history can be discussed. It should be discussed.
1: No, but is this history at all? That is the main question. You keep saying that harsh truths and difficult histories should be discussed. And I 100% agree. But if something is distorted, this is not history. According to whoever
2: who will decide?
1: It, this is less history, more distortion, exaggeration, and perhaps borderline dangerous.
2: Who will decide?
1: That is the million-dollar question. Who will decide? At least legally, it is the state who decides. It's the state who decides whether something could incite violence. Now, is it a disproportionate power that we are handing the state? I think that's a conversation we've had over and over and over with multiple films. Yes, Kushal, please respond and I'm coming to you, Avishkar.
3: No, but this is a very slippery slope, Padmaja. Same argument was given that Dhurandhar is propaganda, Kashmir Files is propaganda. Let Satluj be propaganda, na? Respond to propaganda with your truth. Why are we not comfortable with this baseline in India? Why do we become Saste Stalins and Minnie Mouse everywhere? Why do we do this?
1: Hmm.
3: Let propaganda flow, na? Aap usko counter karo. And I get it that, you know, it did not Kangana Ranaut did not get that privilege, and I had stood up for Kangana Ranaut at that time also, because at that time so-called Punjabi sentiments were hurt because of Kangana Ranaut. Now Kangana ke bhi movie ko aane dena tha. Hamare yahan problem kya hoti hai malum hai? Hum log ek hi cheez mein PhD karke baithe hain India mein. Whataboutism and authoritarianism. Hum bas wahi karte rehte hain. O to denal nahi hoya si, sa denal nahi hoya si. Bas yahi karte rehte hain hum log. Why can't we just say, let these movie come out and let's respond with brutal facts. We have platforms now. OTTs will publish your movies also. If they will publish Satluj, they will publish another thing. The same arguments Padmaja were made against Dhurandhar. On your show only, you remember, Arfa was talking about the same arguments ki ye to propaganda hai ji. Arre propaganda hai to hone do na, kya farak padta hai? Aap propaganda ko correct karo. Maine do paragraph padhe hai sirf 1991 ke article ke. Aise main BCO pad sakta hu jo kar rahe the us samay terrorist Punjab mein. Aur ye koi, and Ramneek is right, it is a Punjabi problem. Isme sirf Sikhon ki problem nahi hai, Hindu, Sikh, Christian, atheist, jo bhi ho, Musalman. पंजाबियों ने सफर किया था उस समय. हम लोग तो आज भी इंटर मैरिज होती है पंजाब में हिंदू और सिखों में. अरे मेरे खुद की फैमिली में होती है तो दूर क्या जाना. तो हमारे तो नॉर्मल है ये. बट द पॉइंट इज व्हाई हु गेट्स टू डिसाइड प्रोपेगेंडा एंड व्हाई शुड द स्टेट हैव सो मच पावर. ये क्या मतलब, मेरे मापियो ऑलरेडी हैगे ने. आई डोंट नीड वन मोर मापियो इन माय लाइफ विद द स्टेट टेलिंग मी ओए पुत्र तू ए कर ओए.
1: सो हियर इज द थिंग कुशल, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेयर यू आर कमिंग फ्रॉम बिकॉज़ यू आर अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट एंड आई इन अ लॉट ऑफ थिंग्स एग्री विद यू. बट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, if I was the state, I would ask you, if tomorrow there was violence thanks to this film, if there was an anti-state sentiment fanned because of this film, if there was, you know, it sort of lit that fire again, who would be responsible? Who would you hold responsible? It's the state's responsibility to maintain law and order, to ensure any anti-India feelings are not fanned. And I can see Ravinder ji also shaking his head, but I'm playing the devil's advocate here, because tomorrow somebody can turn around and ask you that.
3: Then you know what? Tomorrow, if somebody chants a religious slogan and does some violent act, I am sure the state will want to ban the religious text, right? It's not gonna ban it. It's not gonna happen. The person doing the violent act is responsible. Nobody else is responsible. If the movie says, I repeat, I have not seen the movie. If the movie says, go physically harm X, Y, Z person, that portion can be clipped because it's a direct call to violence with clear and imminent danger. Two, if the movie says someone alive or somebody whose family member has been defamed, they can file a defamation suit. That is understandable. Other than that, propaganda. But I'm sorry, I'm an atheist. I think all religion is propaganda.
1: Okay. So, Avishkar Singhvi, there are two parts to this. One, of course, is about free speech and the other is about politics. Now, I'd ask you were also about that 95 phase. Now let me ask you about KPS Gill. You know, KPS Gill, very, very polarizing figure, depicted in this movie, sort of in a villain role from whatever I have gleaned from people who have watched it. How is it that despite all of this, Congress is still in support of the film? Are you comfortable with the portrayal of the then police chief?
4: Vasudha, I am not here as a Congress spokesperson. I am just here as an advocate, just to remind you. But just to highlight that, I think all
1: Padmaja
4: of us...
1: Padmaja here, but yes, I think I threw you off with that question. It's yes. Padmaja, yes, go on.
4: No, that's okay. That's all right. But I think all of us panelists are on the same page and it's all of us against you in this case. So because you are playing the devil's advocate. But I'll just say, to answer your question, the judgment of K.A. Abbas clearly says that the standpoint or the threshold for free speech is not a heckler's veto. The person who may threaten violence, he is to be stopped. And the state's duty is to stop, is to control the law and order situation, not to ban the free content or to curtail liberty. That is what the standard of free speech is. And by the same yardstick, if you're talking about inaccuracy in depiction in the movie, if the 127 cuts the movie has already gone through, it can go through a few more cuts and it can become more accurate. That's not a ground
1: but
4: to ban the
1: But they weren't willing to execute the cuts, right? That is where the problem lay. That 127 cuts were recommended. The filmmakers bypassed it and released it on OTT
0: instead. Accurate to whose comfort?
4: No, that's not, I mean, according to me, it's very simple that you cannot ban the, throw the baby out of the bathwater, and you can preserve the content and have it released and let people be the judge of it. I think if there's inaccuracy of content, there have been hundreds of such examples. We had Bandit Queen release. Mm. There was so much controversy around Bandit Queen back in the day. We had movies, we have had very, very sensitive content release in this country. But it all depends on who is on, who is on the side of the movie and who is against it. Who is in control of the powers that be at the time. So I think that that's the real question we must. And what kind of society are we looking at? Are we looking at a society that that polices content, or are we looking at a free society that promotes the exchange of ideas?
1: Okay, let people be the judge of it. One of those very rare occasions where we have everyone on the same side of the argument. At the end of the day, in a democracy, free speech must be held above all. On that very cordial note, thank you very much, all gentlemen, for having joined me. Moving on to a story that has been dominating headlines for weeks now, and we've been, in fact, on that story right from the beginning on The Buck Stops Here. A month after Ram Temple donation theft controversy first erupted, the Temple Trust met in Ayodhya today for a key decision. The decision on the resignation of Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra. And in the meeting that lasted 3 hours, the Trust did accept their resignations. Now, that part was widely expected. What wasn't expected is the way in which the Trust chose to publicly defend Champat Rai. Speaking to the media soon after, Treasurer of the Trust, Swami Govind Dev Giriji, he heaped praises on Champat Rai, saying that his resignation was accepted since there was no other option as per the rules, and that his conduct had set an example of maturity and magnanimity. Listen in.
5: मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूँ. माने चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ, और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया. उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था. तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है. इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं. इस बात को ध्यान में लीजिएगा. हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं. उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस. जब ये त्याग पत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना, अस्वीकार करना, ये बात आपके हाथ में नहीं है. अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए. ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया. उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया.
1: Okay, so now we've got two senior journalists with us here to dissect what really happened. Harshvardhan Tripathi, senior journalist, joins us along with Ashutosh ji. Harshvardhan ji, ye kaisa cleanup hai? Aapne boli diya ki unki sari sevaye outstanding hai, bahut unhone badhiya kaam kiya hai. To phir chori kiske nigrani mein hui? Who was supervising everything that happened inside the Ram Mandir Trust? Kya sirf Tinnu Yadav pe hi sara thikra phutega?
6: Nahi, nahi, mujhe lagta hai ki Panja, ye sabse mahatvapurna sawal hai. Lekin aapne jo pucha, kya ये जो चोरी हुई, इससे पहले चंपत राय की जो भूमिका है, चंपत राय इस राम मंदिर आंदोलन से वर्षों से जुड़े रहे. 1990 के बाद, मुझे जहाँ तक ध्यान में, 91 से शायद हुआ, अयोध्या में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया, और इस राम मंदिर के बनने में उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया. क्या उसको, ट्रस्ट को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद आता है कि क्या उनकी निगरानी में दिक्कत हुई? अगर उनकी निगरानी में मुश्किल नहीं हुई होती, और मैं बार बार कहता हूं, मैं उदाहरण भी देता हूं कि मनमोहन सिंह जी बेईमान नहीं थे, वो चोर नहीं थे, वो भ्रष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी सरकार में ढेर सारे मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे, कई मंत्री तो जेल भी गए. मनमोहन सिंह थोड़ी ना जेल भेजे गए थे, या जेल भेजे गए हों तो कोई मुझे उदाहरण बताए, लेकिन उनकी सरकार पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे. न्यासी होने के नाते, महासचिव होने के नाते, और बिना किसी संकोच के मैं कहूं तो कहीं ना कहीं वो अहंकार चंपत जी में दिखने लगा था. कई लोगों का ये कहना था कि वो सब कुछ स्वयं, उनको लगता था कि हम कर देंगे. शायद वही अहंकार रहा होगा कि वो चले गए रिकवर कराने के लिए. उनकी मंशा अगर खराब रही होती तो पुलिस को लेकर पैसे क्यों रिकवर कराते? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जांच होने दीजिए. अगर उनकी भूमिका निकलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए.
1: ओके, अगर भूमिका निकलती है आशुतोष जी, तब कार्रवाई होनी चाहिए. फॉर नाउ एक्शन इज सफिशिएंट.
7: देखिए पद्मजा, ट्रस्ट ने तो पहले उनको क्लीन चिट दे दी है, इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की है कि अब किस पुलिस वाले की हिम्मत होगी जो उनसे ठीक से पूछताछ करेगा या उनकी भूमिका की जांच करेगा। तो जो आज ट्रस्ट ने एक काम तो ठीक किया, कम से कम उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन जिस तरीके से तारीफ की गई है,
1: नहीं और स्वीकार भी इसलिए किया है बिकॉज दे सेड दे हैड नो ऑप्शन, दे सेड दैट द मैंडेट बिफोर अस इज दैट बिकॉज चंपत राय हैज रिजाइंड वी हैड टू एक्सेप्ट, व्हिच ऑलमोस्ट मेक्स वन थिंक दैट इफ दे हैड द ऑप्शन दे परहैप्स शुड हैव रिजेक्टेड इट आल्सो।
7: नो नो
1: नो, ऑलमोस्ट लाइक चंपत राय मैग्नानिमसली ऑफर्ड टू रिजाइन।
7: नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए उसमें दो दो ऑप्शंस होते हैं, एक विकल्प ये होता है कि आप इस्तीफा दे देते हैं, ट्रस्ट का ये प्रेरोगेटिव है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार करें, इस्तीफे को स्वीकार ना करें। ट्रस्ट तो बड़े आराम से इस्तीफे का स्वीकार कर सकता था, क्या कोई क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ कि आप कोई आदमी अगर इस्तीफा देगा तो हटाने को लेके क्लॉज है कि जो जो ट्रस्ट में 10-14 लोग हैं, 14 में से 3 लोग ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा नियुक्त है, एक आदमी की मृत्यु हो गई तो 10 में से 2 अनिल मिश्रा और चंपत राय, तो बचे 8 लोग, 2/3 बहुमत से आप किसी को भी सैक कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, ये तो ट्रस्ट का नियम है। अब उसमें चूंकि इस्तीफा दे दिया इसलिए हम स्वीकार कर रहे हैं, मतलब ये नाइदर हियर नॉर देयर, ये तो सीधे सीधे खुलेआम लीपापोती है। आज की तारीख का कोई मुझे बता दे कि क्या 2G के मामले में कोई किसी की भूमिका साबित हुई, लेकिन वो लोग जेल गए ना, ए राजा जेल गया, उनके मंत्रालय गया, क्या आज तक सुरेश कलमाड़ी की भूमिका स्पष्ट हुई क्या? नहीं स्पष्ट हुई। तो बिना जांच किए आपने अभी से क्लीन चिट दे दी, तो सोसाइटी का क्या अर्थ है,
1: like
7: पुलिस का क्या अर्थ?
6: नहीं नहीं देखिए, अच्छा हुआ मैंने तो पहले ही कहा, क्या मनमोहन सिंह जी जेल गए थे क्या नहीं गए? अब आशुतोष जी कह रहे हैं कि जो जेल गए उनकी किसकी की, तो जांच तो होने दीजिए ना भाई, आप दोनों दोनों बातें कैसे? और एक एक मैं फैक्ट बता दूं, जिसकी तरफ पता नहीं क्यों हम में से किसी ने वो चिट्ठी ध्यान से नहीं पढ़ी, 3 पन्ने की जो चिट्ठी है, और जो गोविंद देव गिरी जी ने कहा है उसमें उन्होंने गोपाल नगर कोटे नाम लिखा, क्योंकि टीवी पर गोपाल राव चल रहा था तो कोई समझ ही नहीं पाया, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल नगर कोटे को भी न्यास ने हटा दिया, उन्होंने तो त्यागपत्र नहीं दिया था, लेकिन उनके ऊपर भी सवाल चूंकि खड़े हो रहे थे इसलिए उनको भी हटाया गया। और मैं ये कह रहा हूं कि चंपत राय जी की गलती है ही, मैं तो पहले दिन से उनका त्यागपत्र मांगने वाला हूं, लेकिन न्यास ने अभी जो किया वो कानून के दायरे में किया, अब अगर जांच में उनकी भूमिका सामने आती है तो कानून काम करे, उसमें न्यास की भूमिका क्या होगी?
1: लेट्स बी ऑनेस्ट, लुकिंग एट द लैंग्वेज ऑफ गोविंद देव गिरी जी, इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक ही वाज डूइंग द बेरेस्ट मिनिमम, उनका बस चलता तो शायद वो इस्तीफा भी नहीं लेते, वो तो उनको मजबूरी में लेना पड़ गया। उन्होंने क्या क्या बोला है? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको हम आभार प्रकट किया, हमने उन्हें बोला कि भाई आपने एग्जाम्पल सेट किया है, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज बीइंग डन एज अ फेवर, दिस इज समथिंग देयर शुड हैव बीन एलिमेंट ऑफ रेप्रिमांडिंग हिम रादर देन सेइंग कि आपने इस्तीफा दे दिया बहुत धन्यवाद।
6: देखिए पंजाब जी, हम लोग पत्रकार हैं और हम लोगों की भाषा बड़ी तीखी होती है, ये संत हैं, संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इनकी भाषा तो आपस में एक दूसरे के लिए कैसे होगी? और मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने जिस न्यास में काम किया उनके उस काम में एक दूसरे के प्रति जिस तरह का रहा होगा आदर रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में उनके ऊपर आरोप है, न्यास की जिम्मेदारी थी उनको बाहर निकालता। और मैं पहले भी कह चुका हूं, देर हुई, त्यागपत्र और पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन त्यागपत्र लिया गया, कार्रवाई अब होगी। और फिर मैं कह रहा हूं, क्या कोई अभी तक कोई ऐसा प्रमाण आया जिसमें कहा गया कि नहीं चंपत राय कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे थे, वो बैठे हुए तो कहते थे अच्छा चलो तुम इतने लाख ले आओ, तुम्हें मतलब थोड़ा तो सोचना चाहिए। ये कुछ लोग जिनके मन में लोभ लालच आया वो ये काम कर रहे थे, जिसकी निगरानी का जिम्मा श्रीमान चंपत राय के ऊपर था और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, उनको पहले ही त्यागपत्र देना था, देर हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहतर कदम।
1: डोंट गेट कॉट अप इन द लैंग्वेज आशुतोष।
7: देखिए नहीं पद्मजा, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर ये कह दूं कि मैं 2 दिन से बहुत हैरान हूं। मैं हर्षवर्धन जी हमारे मित्र हैं, हमारी बात का बुरा ना माने, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ,
1: कुछ बहुत कोई कहने वाले हैं, जब भी कोई कहता है ना बुरा मत मानिए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ,
7: हर्षवर्धन हर्षवर्धन हर्षवर्धन हर्षवर्धन मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरीके से, इसलिए मैं तीखे शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, और वैसे भी अलग देखिए मैं पे जाता हूँ, कोई कहता है चंपत राय की तुलना महात्मा गांधी से कर रहा, कल एक पूर्व सांसद मुद्दे जो RSS जुड़े हैं वो लोकमान्य तिलक से कर रहे, कोई मनमोहन सिंह से कर रहा, अभी इन्होंने मनमोहन सिंह जी की बात कर दी, मनमोहन सिंह जी का दूर दूर तक करप्शन से कोई लेना देना नहीं था। हाँ ये बात अलग है, ही प्रेसाइडेड अ गवर्नमेंट विच वाज फुल्ली जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, मैंने कहा साबित तो कुछ नहीं हुआ उसमें। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, ये सिर्फ चढ़ावा चोरी का प्रश्न नहीं है, इसको पूरे मामले को चढ़ावा चोरी में कन्वर्ट किया जा रहा, वहां रिक्रूटमेंट को लेकर जो बहुत बहुत बड़ा स्कैम था वहां पे, ये तो SIT की रिपोर्ट में सारी बातें सामने आ रही हैं। वहां जमीन के लेन देन का मसला चल रहा था कि 2 करोड़ की जमीन को आपने 18.5 करोड़ में बेच दिया। वहां पे जो स्पेशल दर्शन हो रहे थे उसमें घुस खाई जा रही थी। क्या ये रिक्रूटमेंट का काम, ये 8 लोग जो गिरफ्तार हुए, क्या ये लोग जिम्मेदार थे? रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था वहां? किसके कहने पर रिक्रूटमेंट हो रहा था? जो जिस एजेंसी को हायर किया गया, सिक्योरिटी की एजेंसी को हायर किया गया, क्या उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में कौन बात करेगा? तो सिर्फ चढ़ावा चोरी का प्रश्न नहीं, मैं मान सकता हूं चढ़ावा चोरी में चोरी हुई, मान लिया मैंने, लेकिन जब 2020-21 में महिपाल सिंह ने कहा चोरी हो रही, चंपत जी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब ऑडिट ने एजेंसी ने कहा कि इसमें SOP
1: बनाया, दैट इज व्हाई ही इज रिजाइंड, हर्षवर्धन जी इज सेइंग दैट इज व्हाई ही इज रिजाइंड।
7: लेट मी टेल यू फिर उसके बाद जमीन घोटाले का प्रश्न आया, SIT गठित हुई, SIT की रिपोर्ट कहां है किसी को नहीं मालूम, नोबडी नोस अनटिल दिस डेट, किसी को नहीं मालूम कि चंपत राय का इस्तीफा है कहां, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया भी है या नहीं दिया। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से राम मंदिर के मामले में, चाहे रिक्रूटमेंट का सवाल हो, चाहे जमीन का प्रश्न हो, चाहे चाहे स्पेशल दर्शन का प्रश्न हो, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा
1: था। ऑर्गेनाइज्ड बाय हु? आर यू सेइंग दैट चंपत राय ऑर्गेनाइज्ड इट? आर यू सेइंग दैट?
7: बिना नहीं, मैं नाम नहीं, मैं कह रहा हूं बिना बड़े लोगों की मिली भगत से यह संभव ही नहीं था। रिक्रूटमेंट का काम टिन्नू यादव नहीं देख सकता, रिक्रूटमेंट का काम जो श्रीवास्तव वो नहीं देख सकता, जो बैंक एम्प्लॉई है, उन्होंने गणना में चोरी की होगी, मैं मान सकता हूं उसको। रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था? स्पेशल दर्शन के लिए पैसे कौन खा रहा था? जमीन का घोटाला कौन कर रहा था?
6: पंजा जी, सबसे पहले तो आशुतोष जी अगर कुछ हमें कह भी देंगे तो मैं उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो छोटा भाई कह रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, तथ्य पर हम बात करेंगे, तीखे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बिना संकोच के एक बात कह दूं कि आशुतोष जी ने सिर्फ खबरों को पढ़ लिया, जानकारी नहीं ली। जैसे किसी ने कह दिया कि चंपत राय 400 गार्ड के साथ चलते थे, अब चूंकि मैं तो शिलान्यास के पहले, शिलान्यास के समय 1 हफ्ते, प्राण प्रतिष्ठा के समय 1 हफ्ते और दर्शन लगातार मैं करता रहा, कोई ये नहीं कह रहा है कि वो एजेंसी कौन सी है। भाई चंपत राय जी ने कोई ऐसी एजेंसी नहीं रखी है, वो एजेंसी अलग अलग संस्थानों में काम करती है, ऐसी एक एजेंसी वहां भी है, बाकायदा जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के जरिए है, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं करती, पहले तो ये जानना चाहिए। नंबर एक, वो जो 400 वाला आंकड़ा है ये आशुतोष जी को मैं कहूंगा एक बार चेक करें अपने कुछ वहां के मित्रों से। दूसरा, जैसे काक भुसुंडी जी गायब हो गए, रामचरित मानस गायब हो गई, हार गायब हो गया है, सिल्ली गायब हो गई, ईंटें गायब हो गई, इस तरह का अतिरेक फैलाया गया। तीसरा, मैं देश के हर मंदिर में, चाहे वो सरकारी प्रबंधन में हो चाहे निजी प्रबंधन में, लगभग दर्शन कर चुका हूं, बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा इतनी शानदार दर्शन की व्यवस्था शायद कहीं मिले। और ये जो कह रहा है वो विशुद्ध झूठ बोल रहा है, वहां स्पेशल दर्शन का अलग से कोई पैसा नहीं लगता है। जहां लाइन में लग के स्मूथ व्यवस्था है कि आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं, वहां कौन आदमी है इतना जो 25,000 रुपये स्पेशल दर्शन का दे? किसी ने कह दिया उसको लेके चले गए, कौवा कान ले गया, पता नहीं चला। चढ़ावा चोरी में गड़बड़ हुई है, उस पर जांच होनी चाहिए। और हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही 8 लोग हैं, मैं कह रहा हूं और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा? हम और आशुतोष जी टीवी पर आपके साथ डिबेट करेंगे, इससे पता चलेगा? ये तो जांच से ही पता चलेगा ना।
1: और लोग कौन है? वही तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड टुडे, व्हिच पुलिस पर्सन विल हैव द गट्स टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ चंपत राय?
6: पद्मजा जी, चंपत राय से 8 घंटे
1: चंपत राय जी को बोली दिया है कि आपके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस है, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, अब कौन पुलिस वाला जाकर के कहेगा कि भाई चंपत जी को मिली भगत हो सकती
6: है? चंपत राय जी से और अनिल मिश्रा से 8 घंटे की पूछताछ हुई है, और ये हम ही लोगों ने चलाया, बाकायदा SIT की टीम उनसे पूछताछ करके आई, और जो पूछताछ करके आई वही रिपोर्ट में है। अब जो रिपोर्ट का एक्सटेंशन किया गया, क्यों किया गया? पहले तो रिपोर्ट आ जानी थी ना, क्यों उसको समय बढ़ाया?
1: अगर उनसे
6: क्योंकि उसको और जांच करनी
1: की गई है तो यानी कि वो भी शक के घेरे में,
6: निश्चित तौर पर
1: अगर वो शक के घेरे में है तो उनके लिए इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है?
6: नहीं देखिए पंजाब जी, मैं फिर कह रहा हूं, हम आप वही भाषा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गोविंद देवगिरी जी क्या भाषा इस्तेमाल करेंगे अपने सहयोगी के लिए या चंपत राय जी के लिए, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं?
1: सर पर अभी तो कुछ टिन्नू यादव के खिलाफ भी
6: उन्होंने क्या
1: तो कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं किया कि आपने अरेस्ट हो करके बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया।
6: दोनों बड़ा फर्क है, बहुत अंतर है पंजा जी। टिन्नू यादव एक ऐसा कर्मचारी जो वहां जाता है और जिसने विश्वासघात किया है, या लवकुश मिश्रा, या वो क्या नाम है श्रीवास्तव,
1: आशुतोष तो कह रहे हैं कि किसी और की मिली भगत के साथ विश्वासघात,
6: तो किसी और को खोज
1: के लिए थोड़ा विश्वासघात
6: कर रहा है आशुतोष जी को, या हमें कैसे पता लगेगा?
1: सर टिन्नू यादव को वॉकी टॉकी किसने दिलाया? क्या किसी की हिम्मत है कि एक ऐसे ही आदमी को, कोई रैंडम आदमी को वो अपना पुलिस का वॉकी टॉकी दे दे?
6: रैंडम आदमी नहीं है ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, दो चीजें हैं, क्या वो उसमें शामिल थे या उनका इग्नोरेंस था, और इग्नोरेंस था तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस था या क्या था, ये कैसे तय होगा, ये जांच से तय होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि चंपत राय जी को सिर्फ इसलिए निशाना लगाना कि एक आदमी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, एक आदमी राम मंदिर के पूरे निर्माण में जुड़ा रहा, वो संघ का प्रचारक रहा, इसलिए आप निशाना लगाकर कहीं और साधना चाहते हैं, तो ये तो संभव नहीं होगा। और फिर सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री के तौर पर हैं और वो मतलब अपनी तरफ से अगर भरोसा दे रहे हैं तो या तो आप ये कह रहे हैं सरकार पर भरोसा नहीं, तो क्या ईडी सीबीआई की जांच कराएंगे, तो वो नरेंद्र मोदी के अंतर्गत आती है, तो कहां जाके जांच रुकेगी ये भी बताना
1: चाहिए। लास्ट वन मिनट आशुतोष।
7: देखिए अब विनय कटियार को तो मैं नहीं बोलूंगा कि संघ विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है या हिंदू विरोधी है, या मैं नृपेंद्र मिश्र को तो नहीं बोलूंगा भाई, विनय कटियार तो खुलेआम नाम ले रहे हैं चंपत राय का, सरोज जो है दूसरे दुबे जी वो तो खुलेआम नाम ले रहे हैं, जो जो संघ से जुड़े हुए लोग वही नाम ले रहे हैं, और कुछ हमारे पत्रकार मित्र में जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रहे, खुलेआम नाम ले रहे हैं चंपत राय का। सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब 2020-21 में महिपाल सिंह ने इस बारे में जानकारी दी, क्यों नहीं चंपत राय ने कार्रवाई की उसके खिलाफ, उसके बाद जब जमीन घोटाले का प्रश्न आया क्यों नहीं कार्रवाई हुई, मेरी 12-2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेची जा रही, ट्रस्ट को बेची जाए 10 मिनट के अंदर, क्यों नहीं कार्रवाई की उन्होंने, और एक ड्राइवर खुलेआम उसकी उसकी उसकी वो अंदर बाहर हो रहा है और काउंटिंग के अंदर अंदर बाहर जा रहा, मतलब ये मैं तो कहता हूं कि अगर अभी तक कोई दूसरी सरकार होती तो चंपत राय को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता, जेल चले गए होते वो। लेकिन चूंकि यहां पर चंपत राय जी हैं संघ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं चंपत राय से कभी नहीं मिला हूं, राम मंदिर के आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन जो ये लालच है ये कब मनुष्य का दिमाग बदल देती किसी को नहीं मालूम।
1: ओके, यू आर आस्किंग फॉर एक्शन, एक्शन हैज बीन टेकन, वेदर इट्स सैटिस्फैक्टरी और सफिशिएंट और नॉट आई विल लीव इट टू द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम बट आई सस्पेक्ट दिस इज अ डिबेट दैट विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एज वेल। हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों
7: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
8: देश का टायर जेके टायर।
9: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
10: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
9: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab samal lega. Aap apna dekh lo.
6: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट द बिग ड्रीम द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। सो वेयर आर यू।
7: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
8: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
9: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100%

0: एंड सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
4: 1933। सरसों से
5: सरसों। इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
6: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
7: Many of the
8: Prime Minister Narendra Modi arrived in Indonesia on the first leg of his three-nation tour, receiving a ceremonial welcome that included an escort by Indonesian Air Force fighter jets after his aircraft entered the country's airspace.

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
9: राजा प्योर मसाला।
10: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
11: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
10: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
12: वी आर ओवर जिमी।
13: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
14: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
15: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट द बिग ड्रीम। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। सो वेयर आर यू।
16: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
4: 1933।
17: The news, Ayush. Since when do we do scripts?

0: only time will tell whether they've done that or not. And if they haven't done it, then it is extremely irresponsible. And I, for one, don't particularly, as a personal opinion, I'm no fan of Diljit Dosanjh. This is the man who also supported, the protests against the farm laws, which would have, in fact, transformed northern India and would have transformed, the lives of farmers in northern India. This man stood and supported those protests.
1: Okay.
0: So today, I don't know what to believe. He's a US citizen. He's keen now that this movie comes out and is released in India, that people go out and watch a pirated version of that movie when clearly it is glorifying Khalistanis. So I, for one, wonder why that is being done.
1: I would just say that, Diljit Dosanjh is a... a figure worthy of debate separately for many of the choices that he has made, from the farmers' protest to the films, to his citizenship, to, his endorsement of various things in India, his appeal to people to download the film and watch pirated versions of it. There are many things to debate as far as he's concerned, but I'll keep that for another day. Today it was about Satluj, and I thank you very much, Jay and Kushal, for your time tonight on India Matters. Thank you very much. Viewer, the country has barely washed the unsettling stain of the Twisha Sharma suicide from its mind when we are presented with another horror, this time from the heart of India's national capital. 28-year-old Akriti Sutar, that's her you see on your screen, was married for just 72 days before she fell to her death this weekend from a third-floor flat in South Delhi's upscale Lodhi colony. It doesn't get more central than that. Akriti was a young professional working as a sales executive. Hours before her death on Saturday evening, she had actually attended her office and even hosted a small post-wedding celebration for her colleagues. Her mother and family have since come forward with horrific allegations of relentless domestic abuse and belt beatings by her husband, Arastu Sikka. They claim she was constantly taunted for not bringing enough from her parental home alongside a brutal demand for 20 lakh rupees in dowry. While the police are investigating digital evidence and search history for a suicide angle, her family strongly maintains she was mentally strong and rejects anything other than their daughter being murdered. What makes this tragedy sting even sharper is that it comes in the heart of the national capital, mere weeks after the country was shaken by the case of actor-model Twisha Sharma, like I said, in Bhopal. Twisha was found dead just 6 months into her marriage to a lawyer whose mother happens to be a retired district judge. When you look at the raw numbers, the reality is staggeringly bleak, and I'm repeating these numbers for the second time in less than 2 months. National Crime Records Bureau data shows that India recorded 5,737 dowry deaths in 2024 alone, the last year for which that data exists. That translates to an average of 16 women dying every single day in our country because of marital harassment and financial greed over dowry. The terrifying truth these back-to-back tragedies reveal is that dowry is completely and utterly entrenched across every stratum of Indian society. Akriti and her husband had been in a relationship for 8 years before their love marriage on April the 24th. We love to believe that childhood friendships, long-term love stories, and deep family associations offer some kind of immunity, a shield. We think if people truly know each other, their families know each other, they are insulated from this malice. But these cases prove that the moment the wedding festivities end, a dark switch flips. No amount of prior love or generational familiarity seems to protect women like Akriti from the transactional nature of greed. There was Twisha, now it's Akriti. And there are statistics now, like the 15 others that died the same day and for the same reason that they did. Here are some big questions that I need to ask tonight, because the death of Akriti Sutar is not just any other death. Akriti had informed her mother that she had left from office to home on Saturday, the evening that she actually died. The same day she had hosted a party for her colleagues in the office to celebrate her wedding, which had taken place 2 months before. Soon after, Akriti's phone was switched off after she spoke to her mother. Her husband, Arastu Sikka, accused Akriti's family of hiding her during their marital time. Akriti was found lying on the ground, lifeless, in Lodhi Colony after apparently falling from the third floor. Her family say she was pushed. She was rushed to the Ames Trauma Center, where she was pronounced dead. Injuries were found on Akriti's left arm and thigh. The family has completely rejected the suicide claim and they have accused the husband of murder. So the big questions I am asking tonight are, why no bloodstains where Akriti's body was apparently found? This has been documented. Why would Akriti die by suicide if she threw a party just hours before that in her office to celebrate her wedding? What explains the injury marks on Akriti's body? Akriti spoke to her mother just 2.5 hours before the death. What happened in those final hours? These are questions that will be a matter of investigation, because like I said, Akriti Sikka died on Saturday, just 2 days ago. I'm joined now by Amay Sutar, who is Akriti's brother. And he joins me live now from the national capital. Amay, ये एक बहुत मुश्किल दौर है आपके लिए और आपके परिवार के लिए. तो पहले मैं आपको मेरे ये बहुत दुखद घटना है और मैं अपने कंडोलेंसेस कन्वे करता हूँ आपको और आपके परिवार को. मेरा पहला सवाल है हमें कि सैटरडे को क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्या आप बता सकते हैं? आकृति ऑफिस गई थी उस दिन, कुछ सेलिब्रेशन भी था उसके ऑफिस में, उसके बाद माँ से बात हुई थी. क्या आप बता सकते हैं डिटेल में क्या हुआ था उस दिन?
2: एक्चुअली सर, उस दिन जो मॉर्निंग में मेरी सिस्टर जो है वो ऑफिस के लिए निकली थी. मेरी सिस्टर को एक्चुअली ऑफिस 3 मंथ बाद उसने अपने ऑफिस को कंटिन्यू किया था. तो जब फर्स्ट डे वो 1 तारीख को ऑफिस गई थी, तो उसने पार्टी देने की सोची थी ऑफिस में. तो उसने बोल भी रखा था कि मैं आप सबको पार्टी दूंगी अपने मैरिज की. तो मेरा मानना ये है कि अगर वो ऑफिस, हाँ एक्चुअली वो सुबह सुबह मॉर्निंग में जब ऑफिस निकली, तो उसने मेरी मदर को फ़ोन करके बोला कि मेरी मम्मी को कि मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ और मैं पहुँच गई हूँ मतलब ऑफिस के लिए, ऐसे बोला उसने. फिर फ़ोन कट किया. फिर इवनिंग में उसने पार्टी दी. बट मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी अपने कलीग्स को अगर कोई भी वादा कर चुका है कि मैं पार्टी दूंगा या कुछ भी है, तो उसके दिमाग में जो भी चल रहा हो पहले से, तो वो फिर भी अंदर मतलब अपने घरेलू दिक्कत या फिर अपने अंदर की चीज़ें की कोई भी प्रॉब्लम है उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं करता. जैसे मैं भी नहीं करता या कोई भी नहीं करता. तो मेरी सिस्टर भी उस टाइम क्यों करती? और मेरी सिस्टर ने अगर वहाँ पार्टी दी, इसका मीन ये नहीं बनता ना कि वो खुश थी या फिर उसका उसके मेंटली कोई प्रेशर नहीं था. ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि सब अपना अपना प्रेशर अंदर रखते हैं, कोई बाहर एक्सप्रेस नहीं करता. और रही बात मेरी जो सिस्टर है, उस दिन उसने पार्टी दी और इवनिंग में जब वो ऑफिस से 6 बजे निकली, 6:18 पे उसने मेरी मम्मी को कॉल किया और बोला कि मम्मी मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ, मैं अभी फ़िलहाल निकल के बैठ गई हूँ, मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, मीन अपने ससुराल जा रही हूँ. बट उसके ही एक घंटे बाद करीबन हमारे पास कॉल आया कि आधे एक घंटे बाद कि आपकी बेटी कॉल नहीं उठा रही. उसके कुछ देर बाद मेरी मम्मी ने मेरे को कॉल किया, मैं ऑफिस में था, तो बोला कि आकृति मतलब कि बेटा कॉल करो, आपकी मतलब बहन जो है कॉल नहीं उठा रही है, उसको कॉल करो उनको. मैंने बोला ओके मैं कॉल करता हूँ. तो मैंने कॉल किया तो तब भी कॉल नहीं लग रहा था उसका. हमने फिर उसको करीबन एक घंटे तक करीबन ट्राई किया. फिर मैं घर गया, फिर घर जाके उसके ऑफिस वगैरह के पेपर वगैरह निकाले, सब जगह ट्राई किया, सब जगह सर्च किया, उसके ऑफिस में भी बाहर भी, हमारे सारे फ्रेंड्स जो थे हम सर्चिंग में लग गए. तो करीबन 10 बजे के आसपास, 9:30 से 10 के बीच में हमने एक लास्ट कॉल ट्राई करी आखिरी, मतलब मेरे सिस्टर के फ़ोन पे मेरे फ्रेंड ने. जब लास्ट कॉल उन्होंने ट्राई करी तो तब पता चला कि ये जो कॉल है वो पिक करी गई थी लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में. और जब लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कॉल पिक करी गई, तो उन्होंने बताया कि आपकी सिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आप जो है लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन आ जाइए. हम लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन जैसे ही पहुँचे, तो उन्होंने हमें ये बताया कि आपकी जो सिस्टर है उनने 3rd फ्लोर से कूद के सुसाइड करने की कोशिश करी. और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और बाकी कोई भी इसके अलावा कोई भी हमारे पास खबर आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके करीबन एक घंटे तक हमको कुछ नहीं बताया गया। एक घंटे बाद जब उनके जो हस्बैंड थे अरस्तु वो जब पहुँचे, उनसे जब पहुँचने के बाद कुछ पूछताछ उनने करी रूम में बिठा के, पूछताछ करने के कुछ देर बाद हमको बताया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर उसके बाद हमें जब बताया गया तो तब मतलब हम कुछ सोचने की हालत में नहीं थे कि कुछ कहने की हालत में थे, तब हम कुछ नहीं कर सके।
1: आपका कहना है हमें कि ये सुइसाइड नहीं था, ये मर्डर था, आपका परिवार ये कह रहा है, ऐसा क्यों है? और पिछले 2-3 महीने में ऐसा कुछ सामने आया था कि कुछ डाउरी को लेकर कुछ हैरेसमेंट था, कुछ मांगे थी इस परिवार का?
2: देखो सर, मैं क्लेरिफाई करता हूँ आपको कि एक्चुअल में जो मेरी सिस्टर थी वो पहली बात तो इतनी मेंटली स्ट्रांग थी कि वो कभी भी सुसाइड अटैम्प्ट नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कि चलो अगर पहले भी ना हो, बट लाइफ के साथ साथ इंसान की अंदर के मेंटलिटी से लेके स्ट्रांगनेस सब चेंज होती है। क्योंकि मेरी सिस्टर और मैंने 7 ईयर्स से अपना घर संभाला था जब हमारे पापा यहाँ से चले गए थे, इस दुनिया से एक्सपायर हो गए थे। हमने सब चीज़ें हैंडल करी थी साथ में मिलके, तो इतने हम मेंटली स्ट्रांग हो चुके थे कि हम ये सब उल्टी सीधी कदम नहीं उठाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मेरी जो सिस्टर है उसको 2.5 महीने से उनके जो ससुराल वाले हैं वो हरदम ये उनको ब्लेम किया करते थे, उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड की जो सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड की जो सिस्टर है वो, कि आप अपने घर से तो अपने घर से कुछ भी लेके नहीं, सामान हमारे सामान को ऐसे बोल रही है, मतलब आप तो अपने घर से कुछ लाए नहीं हो तो हमारे सामान को ब्लेम मत करो, कि हमारे सामान को हाथ मत लगाओ और अपने घर से लेके आओ कुछ ना कुछ। और शादी से पहले ये सारे मतलब कि अपने आप को क्लीन चिट दे रहे थे कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत अच्छे हैं और हम किसी भी चीज़ के मतलब कोई भी हम आपसे उम्मीद नहीं रखते हैं। और उसके बाद ये सब चीज़ की डिमांड करने लग गए एक तरीके से कि हमको पैसे भी चाहिए, हमको सामान भी चाहिए, सब चीज़।
1: लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी आकृति के साथ हमें, और आकृति का मेंटल कंडीशन क्या था, उन्होंने क्या बोला आपको?
2: एक्चुअल में मेरी जो सिस्टर के ऊपर हाथ उठाया जा रहा था वो जो है वो मेरे को नहीं बताया गया था। मेरे को इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि जो मेरी मतलब मेरी जो मम्मी थी, मेरी मदर जो थी, उनको ये सब चीज़ जो है मेरी सिस्टर ने एक बार बीच में बताया था, तो मेरी मदर ने उनको उनके हस्बैंड वगैरह सबको समझाया था बेटा कि ऐसे कुछ नहीं होता ये वो। फिर जब ये 2-3 बार उसके बाद अभी हाथ उठाया गया तो उसने मेरी मम्मी को मतलब मेरी मदर को कुछ नहीं बताया। तो मेरी मदर ने मेरे को कुछ दिन बाद मतलब अभी 3 तारीख को जब मैं घर पे आया, तो हम अभी 6 तारीख को यहाँ से गांव के लिए निकलने वाले थे, अपने विलेज जा रहे थे कुछ काम से, तो उनने बोला कि आप जो हैं मतलब मेरी मम्मी मेरे से बोल रही हैं कि आप एक काम करो दीपू, हम तो गाँव चले जाएँगे तो मैं तेरे को एक बात बताती हूँ, ये किसी को मत बताना। और उनने ये सब बताया मेरी मम्मी को कि मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि जैसे कि आपकी जो सिस्टर है उसको ऊपर हाथ उठाता है, उसका पति ऐसे करता है वैसे करता है, तो दीपू जब चल के एक बार बात करते हैं 6 तारीख को हम जब गांव जाएंगे उससे पहले उनके घर में, तो ऐसा वैसा कुछ होना नहीं चाहिए और मैं तेरे को बताया नहीं क्योंकि तू टेंशन लेगा, इसलिए ऐसे करके मेरी मम्मी ने मेरे को जब बताया तो उस टाइम मैं बहुत प्रेशराइज हो गया दिमाग से, मेरे को बहुत गुस्सा सा आने लगा। तो मैंने बोला एक काम करो, इतना लेट करके आप तो वैसे ही लेट कर चुके हो, तो अभी कॉल लगाओ। उनने कॉल लगाया उनके घर पे, हमने इन सब चीज़ को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद ये सब चीज़ तभी से स्टार्ट हो गई इनके घर में, मेरी बहन को और ज़्यादा गाली देना और ज़्यादा हराश करना। उसके बाद ये जब हराश हो गई हद से ज़्यादा, तो ये जब ऑफिस गई तब भी इसको हराश करा गया, ऑफिस के लिए भी अटकाया गया। क्योंकि शादी से पहले इनने बोला था कि मैं ऑफिस करूँगी, ऑफिस जाऊँगी, जॉब करूँगी, मैं इंडिपेंडेंटली रहूँगी, मैं अपने ब्रदर को हेल्प करूँगी। और जब नहीं जाने दिया गया तो मेरी सिस्टर ने बोला ठीक है मैं नहीं जाऊँगी बट आप जॉब पर जाओ, मीन्स उनके हस्बैंड अरस्तु, बट वो भी जॉब पर जाने को राजी नहीं। उनका कहना ये था कि मेरे जो पापा हैं वो सेक्शन ऑफिसर हैं, उनके बहुत बढ़िया सैलरी है, मैं तेरे को बहुत खुशी में रख रहा हूँ, मतलब हमारे मेरे पापा के पैसे तो आ रहे हैं, हम उड़ा रहे हैं, तो मैं भी उड़ा रहा हूँ, तू भी उड़ा, मतलब हमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनका कहना ये था। और मेरी सिस्टर का कहना ये था कि हम बेबी प्लान करते भी हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको मैं क्या जवाब दूंगी कि आपके फादर क्या करते हैं क्या नहीं करते, या फिर इन फ्यूचर मैं अपना फ्यूचर कैसे देख लूँ मैं आपके साथ अगर आप कोई जॉब नहीं करते तो। तो अगर आप जॉब नहीं करते हो, फिर आप भी घर पे रहोगे, मैं भी घर पे रहूँगी, अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ होके कि घर पे साथ में रहेंगे इतने लॉन्ग टाइम तक, तो हरदम लड़ाई होगी। तो आप जॉब पे, इनको जॉब जाने की बात आई तो ये पहले अटकाने लगे, फिर जब इनने घुमा फिरा के हाँ भी करी तो ये चाहते थे कि ये जॉब पे ना जा सके, ऐसी सिचुएशन ही बार बार क्रिएट करते रहे।
1: एक डाउरी हैरेसमेंट डेथ का केस दर्ज हुआ है और हम इसको लगातार ट्रैक करेंगे। त्विशा शर्मा केस के बाद दिस इज़ द स्टोरी दैट हैज़ कम बिफोर अस हियर ऑन NDTV एंड दैट्स द रीज़न व्हाई वी डिसाइडेड टू पुट अ स्पॉटलाइट ऑन इट, नॉट इन सम रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री बट इन द हार्ट of India's national capital in Lodhi colony. There is a sense of disbelief that something like this can happen. Amay Sutar, humse baat karne ke liye bahut dhanyabad. Thank you very much for joining me. And remember, marital abuse doesn't choose strata, it doesn't choose communities, it doesn't choose where people come from, how rich they are, and what they plan to do. I spoke to a former film star who has spoken out now for the first time about the grievous abuse that she faced and is facing in her marriage right now. Selina Jaitley with me right here on NDTV. She's someone who left to pursue other priorities, her personal life, at the peak of her fame and fortune in the film industry. It's not something you see very often. And all the years since, we've hardly heard from her. But now she's ready, not for a comeback, but for something of a homecoming. She needs no introduction, and that may actually be the most cliched way to introduce someone. But Selina Jaitley genuinely needs no introduction. Selina, it's good to see you here.
3: So very kind of you.
1: I know it's been a difficult few years for you. You're yes. still in the middle of that storm.
3: Yes.
1: But I am so happy to hear that you're back with a movie. Your yes. fans are going to be happy. They're going to be delighted. You know, you had very consciously decided to step away from the industry that yes. you loved and embraced
3: yes.
1: For, you know, to get married and start a family. But now you're back with a film called Sister Nivedita. Yes. I'm going to get into that in just a bit. But why did you decide now? Why have you come back to the film industry?
3: You know, sometimes in life, a lot of people are faced with circumstances which break you and leave you no option but to start all over again. My craft is what has stood by me through all my agonies and ecstasies of life. And I think this is my way of rescuing myself through my craft, because this is what I know best. I'm left in a situation in life where I have no option but to move forward full throttle. I can either give up and die, or I can turn to something that can heal me, and in turn, celebrate a person who should be known to today's generation.
1: Why are you broken? You know, this sounds like this movie is almost a lifeline for you personally, Selina.
3: Yes.
1: Why has it gotten to this point for you?
3: You know, we all take decisions in our life which we feel are in the best of our interest, Shiv. And in my case, I thought giving it all up at the peak of my career, because I thought I had met the perfect life partner. And I was blessed with the most perfect children. I can't even tell you how beautiful that was.
1: Yeah.
3: But, you know, having personal accomplishments does not protect you from violence. Having a public image does not protect you from private erosion. Having a degree, a great degree, does not protect you from gaslighting. And I eroded privately in the kind of relationship I was. But equations change when children come into the picture.
1: Yeah.
3: Your parents pass away. You know, there are things in a human being's life which changed them completely from the best version of themselves. The first is the death.

0: Moving on, in Maharashtra, it continues to reel under monsoon fury with heavy rains triggering widespread disruption. Amid the crisis, Chief Minister Devendra Fadnavis reviewed the situation at a high-level meeting. There were six people who were killed after a building collapsed in Mumbai's Mankurd following heavy rainfall. NDRF has carried out rescue operations, while Mayor Ritu Tawade has met the victim's family at Govindai Hospital. Maharashtra Minister, meanwhile, Girish Mahajan, has blamed the collapse on heavy rainfall. He's also admitted that the concerns over illegal constructions remain and said that such buildings will now be investigated. The opposition, however, has held the government responsible, accusing it of failing to identify and act against unsafe and illegal buildings. With this latest tragedy, the death toll from the rain-related building collapses in Mumbai has climbed to 9 in just 6 days. There were 3 people who were killed in a landslide in Pune as well. And all of this combined is a grim reminder that every spell of heavy rainfall is exposing the city's crumbling infrastructure and the cost of delayed action. And the people who are in question are those who we have voted to power, are those who are looking after the taxes that we pay. Let's first hear what the Mumbai Mayor Ritu Tawade has to say on the whole issue.
1: या ठिकाणी पूर्ण वातावरण बदल हे होतात आहे. ऑरेंज अलर्टवरून रेड अलर्ट या ठिकाणी जाहीर केलेला आहे. ज्या ज्या पद्धतीने हवामान खात्याकडनं अपडेट येतात आहे, अर्ध्या अर्ध्या तासाने आपण मुंबईकरांच्या पूर्ण मेसेजवरती पण त्याचा प्रचार आणि प्रसार करतो आहे, जेणेकरून मुंबईकरांना आपण त्या ठिकाणी सावधानता बाळगायला सांगतो आहे. हा जो रेड अलर्ट आहे, ह्याच्यामध्ये आता तुम्ही पाहताय आपण बाहेर आहोत सगळेजण, मुसळधार पाऊस आणि वेगवान वारा आणि त्याबरोबर समुद्राला हाय टाईड आहे, ह्या सगळ्याच गोष्टी एकत्र आलेल्या आहेत. त्यामुळे अतिशय सावधानपणे मुंबईकरांनी घराच्या बाहेर पडावं, कुठल्याही मोठ्या झाडाखाली त्यांनी उभं राहू नये, कुठल्याही झाडाखाली आपलं वाहन त्यांनी पार्क करू नये, विजेच्या खांबाजवळ त्यांनी उभं राहू नये किंवा विजेच्या खांबाजवळ त्यांनी गाड्याही पार्क करू नये.
0: From Maharashtra, let's now tell you what's happening in the state of Tamil Nadu, where the war of words between the DMK and Chief Minister Vijay's TVK has escalated sharply over the horse trading charges. Udayanidhi Stalin has hit back at allegations that the DMK is trying to topple the TVK government. Dismissing the charge, Udayanidhi said that the DMK has no intention of bringing down the government and claimed that the people themselves will decide the fate of Vijay government. He also accused the TVK of attempting to poach MLAs from the other party, particularly the AIADMK. The political slugfest comes even as the DMK faces criticism from the former ally MDMK. Party chief Vaiko has alleged that horse trading corruption and a commission raj flourished even during the DMK's rule, thereby launching a fresh attack on the Stalin-led party. Political reactions coming in on that story.
2: டெய்லி காலில் எழுந்திரிச்சோன்னே இதுதான் அவங்களுக்கு டைலாக்கு. அது மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு அவங்க ஆட்சியை கவிழ்க்க நாம் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். இவங்க ஆட்சி நடக்கிற லட்சணத்தை பார்த்தா நாமெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய தேவையே இல்லை. மக்களே தினமும் நிச்சயம் ஒரு நாள் விரைவில் கவுத்து விட்டுருவாங்க. எவ்வளோ தாங்கிக்க முடியும்? ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அவங்க கட்சி எம்எல்ஏவை இழுக்க பார்க்குறோம். யார் எம்எல்ஏன்னு தெரியாதுயா? ஒரு அதிமுக எம்எல்ஏ கூட விட மாட்டேன். அதுவும் குறிப்பா ஊழல் வழக்கு யார் யார் மேல இருக்கோ அவனெல்லாம் நான் விட மாட்டேன், வேற யாரும் தொட்ட விட மாட்டேன், நான் மட்டும்தான் தொடுவேன் அப்படின்னு சட்டசபையில சொன்னதை நாங்க கூட நினைச்சோம். சரி, பஞ்ச் டயலாக் தான் பேசுறாரு, எங்களுக்கு சில நேரம் டவுட் ஆயிடுது, நாம சட்டசபைக்கு தான் வந்திருக்கோமா இல்ல வேற தியேட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ படம் பார்க்க வந்திருக்கோமா?
3: புதிதாக ஒரு தொழிற்சாலை தொடங்க வேண்டுமா, இத்தனை கோடி. இதையெல்லாம் அன்றாடம் சந்திக்கின்ற கட்சிக்கு அப்பாற்பட்ட

0: the news.
1: Ayush, since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
0: Wow.
1: 4K. The works.
2: Where's the hook?
1: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
2: Where's the hook?
1: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
2: Bro, where's the hook?
1: Cross-platform, digital first.
3: Hello and welcome. You're watching NDTV. It's 11 p.m. and I'm Tanisha Avasthi. On the course of next 30 minutes, we're going to get you stories that have made it to the headlines. But as always, let's give you a quick check of all the other stories that have made it to the top of the charts. Ram Temple Trust accepts its General Secretary Champat Rai's resignation. Among the frontrunners to succeed him is BHP's Bajrang Bagra. Trust says costly donated items said to have been stolen will be displayed. Diljit Dosanjh's Satluj taken down by Z5 app over alleged potential misuse by anti-India forces. Pirated copies of the film surface online. Diljit calls fans to watch leaked version. OTT platform Z5 says that we do not support piracy. NDRF, SDRF teams deployed in Maharashtra. Red alert has been issued for Pune, Raigarh, Nashik and Palghar for tomorrow. Rape and murder of 11-year-old girl in West Bengal's Barupur triggers political tension. Three arrested by cops. Chief Minister says justice will be delivered. Prime Minister Narendra Modi begins his three-nation tour with Indonesia, set to hold talks with the President of Indonesia on the defence, trade and investment. Next stop is New Zealand and Australia. And we're starting this edition with a top political story that's coming in from the state of Uttar Pradesh. The fallout from the alleged Ram Temple donation theft has triggered major developments within the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust today. At a crucial meeting that was held late in the afternoon today, it was chaired by Mahant Nitya Gopal Das. The trust expressed regret over the episode and accepted the resignation of General Secretary Champat Rai. Well, now the meeting also discussed Anil Mishra's resignation, who is also one of the trustees who has now resigned. His resignation has been accepted, with saints and seers saying that the incident has raised serious questions of faith. The treasurer, Swami Govind Dev Giri, has acknowledged that a grave error had been occurred and that certain lapses had gone unnoticed. We are getting in a lot of reactions on that political development that took place today. Let's take a look at some of them.
4: हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था
5: जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।
0: जो भी दोषी पाए जाए उन्हें कड़े से कड़ा दंड मिले और किसी को भी लिहाज न किया जाए। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद श्री चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने जांच निष्पक्ष हो सके और निष्पक्ष होती हुई दिखे, इसके लिए अपने पदों से त्याग पत्र दिया था। उनकी भावना का आदर करते हुए ट्रस्टियों ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।
6: श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर जो घटना घटी है, ये करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का विषय है, और करोड़ों लोगों का विश्वास कायम रहे, करोड़ों लोगों की श्रद्धा, आस्था और उनका भरोसा कायम रहे, तो इसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और अयोध्या तो वो धरती है जो हर वक्त अग्नि परीक्षा मांगती है। जहां सीता मां की भी अग्नि परीक्षा हुई, तो ट्रस्ट की अग्नि परीक्षा भी होनी चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं।
3: And cutting across to other big stories that we are tracking on this edition, and this one has created a big talking point across the country. This is about Diljit Dosanjh's latest movie, Satluj. After years of delays and controversies, Diljit Dosanjh's long-awaited film, Punjab 95, which was later released on Z5 under the new title Satluj, has been taken down from streaming platform in India. And this happened

0: Sikka. They claim she was constantly taunted for not bringing enough from her parental home alongside a brutal demand for 20 lakh rupees in dowry. While the police are investigating digital evidence and search history for a suicide angle, her family strongly maintains she was mentally strong and rejects anything other than their daughter being murdered. What makes this tragedy sting even sharper is that it comes in the heart of the national capital, mere weeks after the country was shaken by the case of actor-model Twisha Sharma, like I said, in Bhopal. Twisha was found dead just 6 months into her marriage to a lawyer whose mother happens to be a retired district judge. When you look at the raw numbers, the reality is staggeringly bleak. And I'm repeating these numbers for the second time in less than 2 months. National Crime Records Bureau data shows that India recorded 5,737 dowry deaths in 2024 alone, the last year for which that data exists. That translates to an average of 16 women dying every single day in our country because of marital harassment and financial greed over dowry. The terrifying truth these back-to-back tragedies reveal is that dowry is completely and utterly entrenched across every stratum of Indian society. Akriti and her husband had been in a relationship for 8 years before their love marriage on April the 24th. We love to believe that childhood friendships, long-term love stories, and deep family associations offer some kind of immunity, a shield. We think if people truly know each other, their families know each other, they are insulated from this malice. But these cases prove that the moment the wedding festivities end, a dark switch flips. No amount of prior love or generational familiarity seems to protect women like Akriti from the transactional nature of greed. There was Twisha, now it's Akriti. And there are statistics now, like the 15 others that died the same day and for the same reason that they did. Here are some big questions that I need to ask tonight, because the death of Akriti Sutar is not just any other death. Akriti had informed her mother that she had left from office to home on Saturday, the evening that she actually died. The same day she had hosted a party for her colleagues in the office to celebrate her wedding, which had taken place 2 months before. Soon after, Akriti's phone was switched off after she spoke to her mother. Her husband, Arastu Sikka, accused Akriti's family of hiding her during their marital time. Akriti was found lying on the ground, lifeless, in Lodhi Colony after apparently falling from the third floor. Her family say she was pushed. She was rushed to the Ames Trauma Center, where she was pronounced dead. Injuries were found on Akriti's left arm and thigh. The family has completely rejected the suicide claim, and they have accused the husband of murder. So the big questions I am asking tonight are, why no bloodstains where Akriti's body was apparently found? This has been documented. Why would Akriti die by suicide if she threw a party just hours before that in her office to celebrate her wedding? What explains the injury marks on Akriti's body? Akriti spoke to her mother just 2.5 hours before the death. What happened in those final hours? These are questions that will be a matter of investigation, because, like I said, Akriti Sikka died on Saturday, just 2 days ago. I'm joined now by Amay Sutar, who is Akriti's brother. And he joins me live now from the national capital. Amay, ye ek bahut mushkil daur hai aapke liye aur aapke parivar ke liye. To pehle main aapko mere ye bahut dukhad घटना है और मैं अपने कंडोलेंसेस कन्वे करता हूं आपको और आपके परिवार को. मेरा पहला सवाल है हमें कि सैटरडे को क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्या आप बता सकते हैं? आकृति ऑफिस गई थी उस दिन, कुछ सेलिब्रेशन भी था उसके ऑफिस में, उसके बाद माँ से बात हुई थी. क्या आप बता सकते हैं डिटेल में क्या हुआ था उस दिन?
1: एक्चुअली सर, उस दिन जो मॉर्निंग में मेरी सिस्टर जो है वो ऑफिस के लिए निकली थी. मेरी सिस्टर को एक्चुअली ऑफिस 3 मंथ बाद उसने अपने ऑफिस को कंटिन्यू किया था. तो जब फर्स्ट डे वो 1 तारीख को ऑफिस गई थी, तो उसने पार्टी देने की सोची थी ऑफिस में. तो उसने बोल भी रखा था कि मैं आप सबको पार्टी दूंगी अपने मैरिज की. तो मेरा मानना ये है कि अगर वो ऑफिस, हाँ एक्चुअली वो सुबह सुबह मॉर्निंग में जो ऑफिस निकली तो उसने मेरी मदर को फ़ोन करके बोला कि मेरी मम्मी को कि मैं ऑफ़िस के लिए निकल चुकी हूँ और मैं पहुँच गई हूँ मतलब ऑफ़िस के लिए, ऐसे बोला उसने. फिर फ़ोन कट किया. फिर इवनिंग में उसने पार्टी दी. बट मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी अपने कलीग्स को अगर कोई भी वादा कर चुका है कि मैं पार्टी दूंगा या कुछ भी है, तो उसके दिमाग में जो भी चल रहा हो पहले से, तो वो फिर भी अंदर मतलब अपने घरेलू दिक्कत या फिर अपने अंदर की चीज़ें की कोई भी प्रॉब्लम है उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं करता. जैसे मैं भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता. तो मेरी सिस्टर भी उस टाइम क्यों करती है? और मेरी सिस्टर ने अगर वहाँ पार्टी दी, इसका मीन ये नहीं ना, ये नहीं बनता ना कि वो खुश थी या फिर उसका उसके मेंटली कोई प्रेशर नहीं था. ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि सब अपना अपना प्रेशर अंदर रखते हैं, कोई बाहर एक्सप्रेस नहीं करता. और रही बात मेरी जो सिस्टर है, उस दिन उसने पार्टी दी और इवनिंग में जब वो ऑफिस से 6 बजे निकली, 6:18 पे उसने मेरी मम्मी को कॉल किया और बोला कि मम्मी मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ, मैं अभी फ़िलहाल निकल के बैठ गई हूँ, मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, मीन अपने ससुराल जा रही हूँ. बट उसके ही आधे एक घंटे बाद करीबन हमारे पास कॉल आया कि आधे एक घंटे बाद कि आपकी बेटी कॉल नहीं उठा रही. उसके कुछ देर बाद मेरी मम्मी ने मेरे को कॉल किया, मैं ऑफिस में था, तो बोला कि आकृति मतलब कि बेटा कॉल करो, आपकी मतलब बहन जो है कॉल नहीं उठा रही है, उसको कॉल करो उनको. मैंने बोला ओके मैं कॉल करता हूँ. तो मैंने कॉल किया तो तब भी कॉल नहीं लग रहा था उसका. हमने फिर उसको करीबन एक आधे एक घंटे तक करीबन ट्राई किया. फिर मैं घर गया, फिर घर जाके उसके ऑफिस वगैरह के पेपर वगैरह निकाले, सब जगह ट्राई किया, सब जगह सर्च किया, उसके ऑफिस में भी बाहर भी, हमारे सारे फ्रेंड्स जो थे हम सर्चिंग में लग गए. तो करीबन 10 बजे के आसपास, 9:30 से 10 के बीच में हमने एक लास्ट कॉल ट्राई करी आखिरी, मतलब मेरे सिस्टर के फ़ोन पे मेरे फ्रेंड ने. जब लास्ट कॉल उन्होंने ट्राई करी तो तब पता चला कि ये जो कॉल है वो पिक करी गई थी लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में. और जब लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कॉल पिक करी गई तो उन्होंने बताया कि आपकी सिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आप जो है लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन आ जाइए. हम लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन जैसे ही पहुँचे तो उनने हमें ये बताया कि आपकी जो सिस्टर है उनने 3rd फ्लोर से कूद के सुसाइड करने की कोशिश करी और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है. और बाकी कोई भी इसके अलावा कोई भी हमारे पास खबर आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे. उसके करीबन एक घंटे तक हमको कुछ नहीं बताया गया. एक घंटे बाद जब उनके जो हस्बैंड थे अरस्तु, वो जब पहुँचे, उनसे जब पहुँचने के बाद कुछ पूछताछ उनने करी रूम में बिठा के, पूछताछ करने के कुछ देर बाद हमको बताया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे. फिर उसके बाद हमें जब बताया गया तो तब मतलब हम कुछ सोचने की हालत में नहीं थे कि कुछ कहने की हालत में, तो तब हम कुछ नहीं कर सके.
0: आपका कहना है हमें कि ये सुइसाइड नहीं था, ये मर्डर था, आपका परिवार ये कह रहा है, ऐसा क्यों है? और पिछले 2-3 महीने में ऐसा कुछ सामने आया था कि कुछ डाउरी को लेकर कुछ हैरेसमेंट था, कुछ मांगे थी इस परिवार का?
1: देखो सर, मैं क्लेरिफाई करता हूँ आपको कि एक्चुअल में जो मेरी सिस्टर थी वो पहली बात तो इतनी मेंटली स्ट्रांग थी कि वो कभी भी सुसाइड अटैम्प्ट नहीं कर सकती. मैं मानता हूँ कि चलो अगर पहले भी ना हो, बट लाइफ के साथ साथ इंसान की अंदर के मेंटलिटी से लेके स्ट्रांगनेस सब चेंज होती है. क्योंकि मेरी सिस्टर और मैंने 7 ईयर्स से अपना घर संभाला था जब हमारे पापा यहाँ से चले गए थे, इस दुनिया से एक्सपायर हो गए थे. हमने सब चीज़ें हैंडल करी थी साथ में मिलके, तो इतने हम मेंटली स्ट्रांग हो चुके थे कि हम ये सब उल्टी सीधी कदम नहीं उठाएंगे. और दूसरी बात यह है कि मेरी जो सिस्टर है उसको 2.5 महीने से उनके जो ससुराल वाले हैं वो हरदम ये उनको ब्लेम किया करते थे, उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड की जो सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड की जो सिस्टर है वो, कि आप अपने घर से तो अपने घर से कुछ भी लेके नहीं, सामान हमारे सामान को ऐसे बोल रही है, मतलब आप तो अपने घर से कुछ लाए नहीं हो तो हमारे सामान को ब्लेम मत करो, कि हमारे सामान को हाथ मत लगाओ और अपने घर से लेके आओ कुछ ना कुछ. और शादी से पहले ये सारे मतलब कि अपने आप को क्लीन चिट दे रहे थे कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत अच्छे हैं और हम किसी भी चीज़ के मतलब कोई भी हम आपसे उम्मीद नहीं रखते हैं, और उसके बाद ये सब चीज़ की डिमांड करने लग गए एक तरीके से, हमको पैसे भी चाहिए, हमको सामान भी चाहिए, सब चीज़।
0: लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी आकृति के साथ हमें, और आकृति का मेंटल कंडीशन क्या था, उन्होंने क्या बोला आपको?
1: एक्चुअल में मेरी जो सिस्टर के ऊपर हाथ उठाया जा रहा था, वो जो है वो मेरे को नहीं बताया गया था। मेरे को इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि जो मेरी मतलब मेरी जो मम्मी थी, मतलब मेरी मदर जो थी, उनको ये सब चीज़ जो है मेरी सिस्टर ने एक बार बीच में बताया था, तो मेरी मदर ने उनको, उनके हस्बैंड वगैरह सबको समझाया था बेटा कि ऐसे कुछ नहीं होता ये वो। फिर जब ये दो तीन बार उसके बाद अभी हाथ उठाया गया, तो उसने मेरी मम्मी को, मतलब मेरी मदर को कुछ नहीं बताया। तो मेरी मदर ने मेरे को कुछ दिन बाद, मतलब अभी 3 तारीख को जब मैं घर पे आया, तो हम अभी 6 तारीख को यहाँ से गांव के लिए निकलने वाले थे, हम अपने विलेज जा रहे थे कुछ काम से, तो उनने बोला कि आप जो हैं मेरी मम्मी मेरे से बोल रही हैं कि आप एक काम करो दीपू, हम तो गाँव चले जाएँगे, तो मैं तेरे को एक बात बताती हूँ, ये किसी को मत बताना। और उनने ये सब बताया मेरी मम्मी को कि मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि जैसे कि आपकी जो सिस्टर है उसको ऊपर हाथ उठाता है, उसका पति ऐसे करता है वैसे करता है, तो दीपू जब चल के एक बार बात करते हैं 6 तारीख को हम जब गांव जाएंगे उससे पहले उनके घर में, तो ऐसा वैसा कुछ होना नहीं चाहिए, और मैं तेरे को बताया नहीं क्योंकि तू टेंशन लेगा, इसलिए ऐसे करके मेरी मम्मी ने मेरे को जब बताया, तो उस टाइम मैं बहुत प्रेशराइज हो गया दिमाग से, मेरे को बहुत गुस्सा सा आने लगा, तो मैंने बोला एक काम करो, इतना लेट करके आप तो वैसे ही लेट कर चुके हो, तो अभी कॉल लगाओ। उनने कॉल लगाया उनके घर पे, हमने इन सब चीज़ को इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करने के बाद ये सब चीज़ तभी से स्टार्ट हो गई इनके घर में, मेरी बहन को और ज़्यादा गाली देना और ज़्यादा हराश करना। उसके बाद ये जब हराश हो गई हद से ज़्यादा, तो ये जब ऑफिस गई तब भी इसको हराश करा गया, ऑफ़िस के लिए भी अटकाया गया, क्योंकि शादी से पहले इनने बोला था कि मैं ऑफ़िस करूँगी, ऑफ़िस जाऊँगी, जॉब करूँगी, मैं इंडिपेंडेंटली रहूँगी, मैं अपने ब्रदर को हेल्प करूँगी, और जब नहीं जाने दिया गया तो मेरी सिस्टर ने बोला ठीक है मैं नहीं जाऊँगी बट आप जॉब पर जाओ, मीन्स उनके हस्बैंड अरस्तु, बट वो भी जॉब पर जाने को राजी नहीं। उनका कहना ये था कि मेरे जो पापा हैं वो सेक्शन ऑफिसर हैं, उनके बहुत बढ़िया सैलरी है, मैं तेरे को बहुत खुशी में रख रहा हूँ, मतलब हमारे मेरे पापा के पैसे तो आ रहे हैं, हम उड़ा रहे हैं, तो मैं भी उड़ा रहा हूँ तू भी उड़ा, मतलब हमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनका कहना ये था। और मेरी सिस्टर का कहना ये था कि हम बेबी प्लान करते भी हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको मैं क्या जवाब दूंगी कि आपके फादर क्या करते हैं क्या नहीं करते, या फिर इन फ्यूचर मैं अपना फ्यूचर कैसे देख लूँ मैं आपके साथ अगर आप कोई जॉब नहीं करते तो अगर आप जॉब नहीं करते हो फिर आप भी घर पे रहोगे, मैं भी घर पे रहूँगी, अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ होके कि घर पे साथ में रहेंगे इतने लॉन्ग टाइम तक, तो हरदम लड़ाई होगी, तो आप जॉब पे, इनको जॉब जाने की बात आई तो ये पहले अटकाने लगे, फिर जब इनने घुमा फिरा के हाँ भी करी तो ये चाहते थे कि ये जॉब पे ना जा सके, ऐसी सिचुएशन बार बार क्रिएट करते रहे।
0: एक डाउरी हैरेसमेंट डेथ का केस दर्ज हुआ है और हम इसको लगातार ट्रैक करेंगे। त्विशा शर्मा केस के बाद दिस इज़ द स्टोरी दैट हैज़ कम बिफोर अस हियर ऑन NDTV, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई वी डिसाइडेड टू पुट अ स्पॉटलाइट ऑन इट, नॉट इन सम रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री बट इन द हार्ट ऑफ इंडियाज़ नेशनल कैपिटल इन लोधी कॉलोनी। देर इज़ अ सेंस ऑफ डिसबिलीफ दैट समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। अमय सुतार, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। And remember, marital abuse doesn't choose strata, it doesn't choose communities, it doesn't choose where people come from, how rich they are, and what they plan to do. I spoke to a former film star who has spoken out now for the first time about the grievous abuse that she faced and is facing in her marriage right now. Selina Jaitley with me right here on NDTV. She's someone who left to pursue other priorities, her personal life, at the peak of her fame and fortune in the film industry. It's not something you see very often, and all the years since we've hardly heard from her. But now she's ready, not for a comeback, but for something of a homecoming. She needs no introduction, and that may actually be the most cliched way to introduce someone, but Selena Jaitley genuinely needs no introduction. Selena, it's good to see you here.
2: So very kind of you.
0: I know it's been a difficult few years for you. You're
2: yes.
0: still in the middle of that storm.
2: Yes.
0: But I am so happy to hear that you're back with a movie. Your
2: yes.
0: fans are going to be happy. They're going to be delighted. You know, you had very consciously decided to step away from the industry that
2: yes.
0: you loved and embraced
2: yes.
0: For, you know, to get married and start a family. But now you're back with a film called Sister Nivedita.
2: Yes.
0: I'm going to get into that in just a bit. But why did you decide now? Why have you come back to the film industry?
2: You know, sometimes in life, a lot of people are faced with circumstances which break you and leave you no option but to start all over again. My craft is what has stood by me through all my agonies and ecstasies of life. And I think this is my way of rescuing myself through my craft, because this is what I know best. I'm left in a situation in life where I have no option but to move forward, full throttle. I can either give up and die, or I can turn to something that can heal me, and in turn, celebrate a person who should be known to today's generation.
0: Why are you broken? You know, this sounds like this movie is almost a lifeline for you personally, Selena.
2: Yes.
0: Why is it? Why has it gotten to this point for you?
2: You know, we all take decisions in our life which we feel are in the best of our interest, Shiv. And in my case, I thought giving it all up at the peak of my career, because I thought I had met the perfect life partner. And I was blessed with the most perfect children. I can't even tell you how beautiful that was.
0: Yeah.
2: But, you know, having personal accomplishments does not protect you from violence. Having a public image does not protect you from private erosion. Having a degree, a great degree, does not protect you from gaslighting. And I eroded privately in the kind of relationship I was. But equations change when children come into the picture.
0: Yeah.
2: Your parents pass away. You know, there are things in a human being's life which change them completely from the best version of themselves. The first is the death of your father and mother. The first is the death of your child. Having to rebuild your life again overnight, okay, and actually finding out that it is just you who are there. No one is going to come and rescue you. And that's what happened with me. And it
0: yeah.
2: happens with, I'm not the only one. I'm just telling my story that if today on your show, someone can relate to it and find some comfort or hope from it.
0: Yeah.
2: So these are the things which change you and transform you. And I gave it all up thinking, this is what I want. I want a house full of kids, a family full of love. The kind of family I grew up as a 4G kid, a 4G granddaughter, and the kind of upbringing that I had in the armed forces.
0: Yeah.
2: Marriage was very sacred. Marriage was valued. Marriage was difficult, and marriage was fought for on a daily basis. And I brought those values with me when I left my country, my parents, my career, everything possible to make it work.
0: Yeah.
2: So when it was all taken away from me overnight, I was not only left stranded in this situation, I was left stranded financially. I was eroded as a human being. I had other challenges
0: yeah.
2: with regards to my brother's situation. I didn't know which front to fight on anymore.
0: Yeah.
2: Yeah. And I literally felt that this cannot be happening to me, because I was just getting over the demise of my beloved parents, of my son Shamsher, two and a half terrible, terrible years of isolation in an Austrian village during COVID. I love Austria, by the way. The people are wonderful. Nothing like that. It's just my circumstances that I'm talking about. And I was discarded after 15 years of devotion, dedication, bearing abuse, highs, lows, everything. I had no option but to fight for myself. At times I felt like I can't go on anymore. I gotta end it. But then I'm a Forgy's daughter. My father did not bring me up to do that.
0: How did things come apart when you look back on it? And you're still in the middle of that storm right now. And it is something that your fans wonder about. There was a fairy tale quality about your relationship. You had decided to give up something very precious when you moved away. What happened, Selena?
2: Honestly, I was looking for a man equivalent to my father, my grandfather.
0: Both I have decorated army officers.
2: My brother, special forces officer. It was the kind of men in my life were very difficult to find in my normal way of living. And I was misled by my own wrong judgment. I do not blame anyone for my own decisions in life. I am accountable, because that's the first thing, my first word that my father taught me in English was accountability.
0: Yeah.
2: So I'm accountable for my own decisions. So when I married my husband at that time, I saw this person. I was introduced to him through someone who is like family, and I call them Masi and Mama. They are not my real Masi and Mama. And I believed what I was shown.
0: Yeah.
2: Also, I lived a very isolated life as an actor. Your life is, you don't get to mix very often. You're always limited to one community.
0: Yeah.
2: Or you are shooting on some location somewhere. And I was very isolated as an actor. I missed the liveliness of being a Forgy Brad and that environment and everything. And then when I met this person, I thought that I took a decision that this is the right person, because I was made to believe that that person also feels the same way for me. And the most important thing I want people to know is that violence and abuse, an abusive marriage, doesn't happen overnight. It often begins with love. It begins with intensity. It begins with promises. Okay. The first incident shocks you. The second incident, the fifth incident confuses you. The 10th one, you cry. And by the 15th incident, you get used to it. Because you know what? In a marriage like this, it doesn't always happen every day. It happens slowly, until all your control has been taken, your personality eroded, and then you start believing and living on those small windows of hope. You carry on in those really small windows of hope, thinking things will get better. This is just temporary. You start making excuses for somebody else's behavior, blaming yourself. That's what happens. And when children come into the picture, in my case, I was blessed with a beautiful set of twins, my sons, Winston and Viraj. You stop thinking about your own needs. You're thinking about their safety, their security, providing them a beautiful childhood.
0: I want you to talk a little bit about what you went through, because women around the world will be looking at you, listening to what you said, and what you said just now about the first time it's scary, the fifth time it's confusing, you don't know what to do. What happened? What was the trigger for it? How did it happen? And how did you face it?
2: You know, violence.
0: This was physical violence?
2: Yes, it was a mixture of all sorts of violence. But you have to understand that violence can be fragmented over time with promises and hopes. And as I told you before, especially a victim of violence, why accomplished people stay in abusive marriage? I'm talking about both men and women, not just women, because I know of many men who are also going through that. Why accomplished men and women stay in abusive marriages is because, of course, there is a factor of love, which is there is promises. Then the slow concept of dependency that is created by the abuser, you know. And then most importantly, one has to understand that just because you have a public persona, it doesn't stop you from eroding privately. It doesn't mean you're strong enough to fight what is there, what you're going through. Just because you're educated, that doesn't, and you have great degrees, that doesn't protect you from gaslighting.
0: Or that you're a film star.
2: Or that you're a film star doesn't protect you from being called terrible, horrific names on a daily basis for no reason whatsoever. And then there are these beautiful days where you feel, you start doubting what actually happened to you. Like, it can't be what happened there 10 days ago. So what people like us go through, okay, is not because we are incapable of handling relationships. It's because we couldn't handle psychological warfare. Mm. We lived through psychological warfare our whole life.
0: Yeah.
2: And in a country, in a culture, where you brought up to believe that marriage is sacred, and it's not just because my parents said you have to be in an abusive marriage. No, no. It's because you have grown up watching the most beautiful marriages. So you think you gotta make yours work. What the heck is wrong with you? Despite the support offered to me, I would see my kids and back out that this would scare them, this would traumatize them. Where would I go? I don't have my financial independence anymore. And that's why on your show, I would like to once again reiterate that women or men, keep your assets to yourself.
0: Yeah. Selena, it's been great to have you here on NDTV. Obviously, we wish you nothing but success, and we also wish you peace and happiness. Thanks for being with me today.
2: Thank you so much. It was a pleasure meeting you.
0: Thank you, Selena.
2: Thank you.

0: the news.
1: Ayush,
0: since when do we do scripts?
1: Fair point.
0: Picture this. The biggest stage. Floodlights.
1: Wow.
0: 4K. The works.
1: Where's the hook?
0: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
1: Where's the hook?
0: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
1: Bro, where's the hook?
0: Cross-platform, digital first, virality.
1: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026.
2: On the course of next 30 minutes, we're going to get you stories that have made it to the headlines. But as always, let's give you a quick check of all the other stories that have made it to the top of the charts. Ram Temple Trust accepts its General Secretary Champat Rai's resignation. Among the frontrunners to succeed him is BHP's Bajrang Bagra. Trust says costly donated items said to have been stolen will be displayed. Diljit Dosanjh's Satluj taken down by Z5 app over alleged potential misuse by anti-India forces. Pirated copies of the film surface online. Diljit calls fans to watch leaked version. OTT platform Z5 says that we do not support piracy. Three NDRF, SDRF teams deployed in Maharashtra. Red alert has been issued for Pune, Raigarh, Nashik and Palghar for tomorrow. Rape and murder of 11-year-old girl in West Bengal's Barupur triggers political tension. Three arrested by cops. Chief Minister says justice will be delivered. Prime Minister Narendra Modi begins his three-nation tour with Indonesia, set to hold talks with the President of Indonesia on the defence, trade and investment. Next stop is New Zealand and Australia. And we are starting this edition with a top political story that's coming in from the state of Uttar Pradesh. The fallout from the alleged Ram Temple donation theft has triggered major developments within the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust today. At a crucial meeting that was held late in the afternoon today, it was chaired by Mahant Nitya Gopal Das. The trust expressed regret over the episode and accepted the resignation of General Secretary Champat Rai. Now, the meeting also discussed Anil Mishra's resignation, who is also one of the trustee who has now resigned. His resignation has been accepted, with saints and seers saying that the incident has raised serious questions of faith. The treasurer, Swami Govind Dev Giri, has acknowledged that a grave error had been occurred and that certain lapses had gone unnoticed. We are getting in a lot of reactions on that political development that took place today. Let's take a look at some of them.
3: हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था
4: जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।
5: जो भी दोषी पाए जाएं उन्हें कड़े से कड़ा दंड मिले और किसी को भी लिहाज न किया जाए। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद श्री चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने जांच निष्पक्ष हो सके और निष्पक्ष होती हुई दिखे, इसके लिए अपने पदों से त्याग पत्र दिया था। उनकी भावना का आदर करते हुए ट्रस्टियों ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।
6: श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर जो घटना घटी है, ये करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का विषय है, और करोड़ों लोगों का विश्वास कायम रहे, करोड़ों लोगों की श्रद्धा, आस्था और उनका भरोसा कायम रहे, तो इसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और अयोध्या तो वो धरती है जो हर वक्त अग्नि परीक्षा मांगती है। जहां सीता मां की भी अग्नि परीक्षा हुई, तो ट्रस्ट की अग्नि परीक्षा भी होनी चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं।
2: And cutting across to other big stories that we are tracking on this edition, and this one has created a big talking point across the country. This is about Diljit Dosanjh's latest movie, Satluj. After years of delays and controversies, Diljit Dosanjh's long-awaited film, Punjab 95, which was later released on Z5 under the new title Satluj, has been taken down from streaming platform in India. And this happened just 2 days after its release. Now, as per sources, the decision to take down Satluj was taken after a careful review. The film had earlier applied for a theatrical release but was not approved in the form in which it was submitted. Sources say that the concerns were raised over certain portions of the film. Diljit Dosanjh has now broken silence, since he is the main protagonist of the movie, on the ban, with a cryptic social media post saying, and I quote, "I challenge the darkness." He also said that now the film will not be stopped and Kalra's voice cannot be silenced. Meanwhile, what's also happened is that advocate Vineet Jindal has now approached the Ministry of Home Affairs, alleging that the film spreads misinformation and promotes sympathy for terrorism. Here is what Diljit Dosanjh has to say on the full controversy.
7: Shukrawar nu hi pata si ve shayad edda ho sakdi hai, jehdi gal mere already dimag si. तो कोई शौक वाली गल नहीं, जेड़ा लगता ही सी भी यस, मैनू लगता सी भी मंडे जो दफ्तर दफ्तर खुलणगे उदो शायद जेड़ी आ फिल्म बैन की जाऊगी, पर संडे शाम नू ही हो जूगी इहदा कोई आइडिया नहीं सी। पर इन्ना क मैनू सीगा, इस करके मैं शायद गल कल कर भी दित्ती सी, डे वन तो ही सीगा, इसी करके फिल्म की प्रमोशन भी नहीं कर सके, इसी करके बिना दसे किसी नू फिल्म नू रिलीज़ किया। जे दस के रिलीज़ करते दो दिन पहला प्रमोट करते फिर तो फिर नहीं सी लगनी, पर हुण मैनूं इस गल दी तसल्ली है कि फिल्म जिहड़ी उह घर घर पहुँच चुकी है, तुहाडे कोल आ फिल्म, लोकां ने फिल्म डाउनलोड भी कर ली है, ते अज जिहड़े हुण नवां यूथ आ उह फिल्म दी गल भी कर रहा है।
2: And even as the controversy surrounding Satluj continues, the film has found an unexpected audience in rural Rajasthan. Watch this visual where Anupgarh district, an entire village, came together for a community screening on a giant screen, with locals saying that the film's message on justice and human rights should reach more people. The event has now gone viral after actor Diljit Dosanjh shared pictures and videos from the screening on social media, reigniting the debate over the film and the calls to ban the lift.

0: अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस, जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है, अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपता जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया।
1: ओके, सो नाउ वी हैव गॉट टू सीनियर जर्नलिस्ट विद अस हियर टू डाइसेक्ट व्हाट रियली हैपेंड। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट जॉइंस अस अलोंग विद आशुतोष जी। हर्षवर्धन जी, ये कैसा क्लीन अप है जब आपने बोल ही दिया कि उनकी सारी सेवाएं आउटस्टैंडिंग है, बहुत उन्होंने बढ़िया काम किया है, तो फिर चोरी किसके निगरानी में हुई? Who was supervising everything that happened inside the Ram Mandir Trust? क्या सिर्फ टिन्नू यादव पे ही सारा ठीकरा फूटेगा?
2: नहीं नहीं, मुझे लगता है कि पंजा ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन आपने जो पूछा क्या ये जो चोरी हुई इससे पहले चंपत राय की जो भूमिका है, चंपत राय इस राम मंदिर आंदोलन से वर्षों से जुड़े रहे, 1990 के बाद मुझे जहाँ तक ध्यान में 91 से शायद हुआ अयोध्या में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया और इस राम मंदिर के बनने में उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, क्या उसको ट्रस्ट को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद आता है कि क्या उनकी निगरानी में दिक्कत हुई? अगर उनकी निगरानी में मुश्किल नहीं हुई होती, और मैं बार बार कहता हूं, मैं उदाहरण भी देता हूं कि मनमोहन सिंह जी बेईमान नहीं थे, वो चोर नहीं थे, वो भ्रष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी सरकार में ढेर सारे मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे, कई मंत्री तो जेल भी गए, मनमोहन सिंह थोड़ी जेल भेजे गए थे, या जेल भेजे गए हों तो कोई मुझे उदाहरण बताए, लेकिन उनकी सरकार पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे, न्यासी होने के नाते, महासचिव होने के नाते, और बिना किसी संकोच के मैं कहूं तो कहीं ना कहीं वो अहंकार चंपत जी में दिखने लगा था। कई लोगों का ये कहना था कि वो सब कुछ स्वयं, उनको लगता था कि हम कर देंगे, शायद वही अहंकार रहा होगा कि वो चले गए रिकवर कराने के लिए। उनकी मंशा अगर खराब रही होती तो पुलिस को लेकर पैसे क्यों रिकवर कराते? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं जांच होने दीजिए, अगर उनकी भूमिका निकलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए।
1: ओके, अगर भूमिका निकलती है आशुतोष जी तब कार्रवाई होनी चाहिए, फॉर नाउ एक्शन इज सफिशिएंट।
3: देखिए पद्मजा, ट्रस्ट ने तो पहले उनको क्लीन चिट दे दी है, इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की है कि अब किस पुलिस वाले की हिम्मत होगी जो उनसे ठीक से पूछताछ करेगा या उनकी भूमिका की जांच करेगा। तो जो आज ट्रस्ट ने एक काम तो ठीक किया, कम से कम उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन जिस तरीके से तारीफ की गई है,
1: नहीं और स्वीकार तो इसलिए किया है बिकॉज दे सेड दे हैड नो ऑप्शन, दे सेड दैट द मैंडेट बिफोर अस इज दैट बिकॉज चंपत राय हैज रिजाइंड वी हैड टू एक्सेप्ट, which almost makes one think that if they had the option they perhaps would have rejected it also.
3: No,
1: so it's almost like Champat Rai magnanimously offered to resign.
3: नहीं, मैं देखिए उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक विकल्प ये होता है कि आप इस्तीफा दे देते हैं, ट्रस्ट का ये प्रेरोगेटिव है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार करें, इस्तीफे को स्वीकार ना करें। ट्रस्ट तो बड़े आराम से इस्तीफे को स्वीकार कर सकता था, क्या कोई क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ कि आप कोई आदमी अगर इस्तीफा देगा तो हटाने को लेके क्लॉज है कि जो ट्रस्ट में 10-14 लोग हैं, 14 में से 3 लोग ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा नियुक्त है, एक आदमी की मृत्यु हो गई तो 10 में से 2 अनिल मिश्रा और चंपत राय, तो बचे 8 लोग, 2/3 बहुमत से आप किसी को भी असैक कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, ये तो ट्रस्ट का नियम है। अब उसमें चूंकि इस्तीफा दे दिया इसलिए हम स्वीकार कर रहे हैं, मतलब ये नाइदर हियर नॉट देयर, ये तो सीधे सीधे खुलेआम लीपापोती है। आज की तारीख का कोई मुझे बता दे कि क्या 2G के मामले में कोई किसी की भूमिका साबित हुई? लेकिन वो लोग जेल गए ना, ये राजा जेल गया, उनके मंत्रालय गया, क्या आज तक सुरेश कलमाड़ी की भूमिका स्पष्ट हुई? क्या नहीं स्पष्ट हुई? तो बिना जांच किए आपने अभी से क्लीन चिट दे दी,
2: नहीं देखिए अच्छा हुआ मैंने तो पहले ही कहा, क्या मनमोहन सिंह जी जेल गए थे क्या नहीं गए? अब आशुतोष जी कह रहे हैं कि जो जेल गए उनकी किसकी की, तो जांच तो होने दीजिए ना भाई, आप दोनों बातें कैसे? और एक मैं फैक्ट बता दूं, जिसकी तरफ पता नहीं क्यों हम में से किसी ने वो चिट्ठी ध्यान से नहीं पढ़ी, 3 पन्ने की जो चिट्ठी और जो गोविंद देव गिरी जी ने कहा है, उसमें उन्होंने गोपाल नगर कोटे नाम लिखा, क्योंकि टीवी पर गोपाल राव चल रहा था तो कोई समझ ही नहीं पाया, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल नगर कोटे को भी न्यास ने हटा दिया, उन्होंने तो त्यागपत्र नहीं दिया था, लेकिन उनके ऊपर भी सवाल चूंकि खड़े हो रहे थे इसलिए उनको भी हटाया गया। और मैं ये कह रहा हूं कि चंपत राय जी की गलती है ही, मैं तो पहले दिन से उनका त्याग पत्र मांगने वाला हूं, लेकिन न्यास ने अभी जो किया वो कानून के दायरे में किया। अब अगर जांच में उनकी भूमिका सामने आती है तो कानून काम करे, उसमें न्यास की भूमिका क्या होगी?
1: लेट्स बी ऑनेस्ट, लुकिंग एट द लैंग्वेज ऑफ गोविंद देव गिरी जी, इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक ही वाज डूइंग द बेरेस्ट मिनिमम। उनका बस चलता तो शायद वो इस्तीफा भी नहीं लेते, वो तो उनको मजबूरी में लेना पड़ गया। उन्होंने क्या क्या बोला है? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको हम आभार प्रकट किया, हमने उन्हें बोला कि भाई आपने एग्जाम्पल सेट किया है। This is not something that is being done as a favor. This is something, there should have been an element of reprimanding him rather than saying कि आपने इस्तीफा दे दिया, बहुत धन्यवाद।
2: देखिए पंडिया जी, हम लोग पत्रकार हैं और हम लोगों की भाषा बड़ी तीखी होती है। ये संत हैं, संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इनकी भाषा तो आपस में एक दूसरे के लिए कैसे होगी? और मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने जिस न्यास में काम किया उनके उस काम में एक दूसरे के प्रति जिस तरह का रहा होगा, आदर रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में उनके ऊपर आरोप हैं, न्यास की जिम्मेदारी थी उनको बाहर निकालता। और मैं पहले भी कह चुका हूं, देर हुई, त्यागपत्र और पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन त्यागपत्र लिया गया, कार्रवाई अब होगी। और फिर मैं कह रहा हूं, क्या कोई अभी तक कोई ऐसा प्रमाण आया जिसमें कहा गया कि नहीं चंपत राय कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे थे, वो बैठे हुए थे, कहते थे अच्छा चलो तुम इतने लाख ले आओ, तुम इतने, मतलब थोड़ा तो सोचना चाहिए। ये कुछ लोग जिनके मन में लोभ लालच आया वो ये काम कर रहे थे, जिसकी निगरानी का जिम्मा श्रीमान चंपत राय के ऊपर था और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, उनको पहले ही त्यागपत्र देना था, देर हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहतर कदम।
1: डोंट गेट कॉट अप इन द लैंग्वेज आशुतोष।
3: देखिए नहीं पद्मजा, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर यह कह दूं कि मैं दो दिन से बहुत हैरान हूं। मैं, हर्षवर्धन जी हमारे मित्र हैं, हमारी बात का बुरा ना माने, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।
1: कुछ बहुत मीठा कहने वाले हैं, जब भी कोई कहता है ना बुरा मत मानिए, बहुत सम्मान करता हूं, मैं
3: हर्षवर्धन मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरीके से, इसलिए मैं तीखे शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। और वैसे भी अलग, देखिए मैं डिबेट पे जाता हूं, कोई कहता है चंपत राय की तुलना महात्मा गांधी से कर रहा, कल एक पूर्व सांसद मुद्दे जो आरएसएस जुड़े हैं वो लोकमान्य तिलक से कर रहे, कोई मनमोहन सिंह से कर रहा, अभी इन्होंने मनमोहन सिंह जी की बात कर दी। मनमोहन सिंह जी का दूर दूर तक करप्शन से कोई लेना देना नहीं था। हाँ ये बात अलग है, ही प्रेसाइडेड अ गवर्नमेंट विच वाज फुल्ली, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। मैंने कहा साबित तो कुछ नहीं हुआ उसमें। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, ये सिर्फ चढ़ावा चोरी का प्रश्न नहीं है, इसको पूरे मामले को चढ़ावा चोरी में कन्वर्ट किया जा रहा। वहां रिक्रूटमेंट को लेकर जो बहुत बहुत बड़ा स्कैम था वहां पे, ये तो SIT की रिपोर्ट में सारी बातें सामने आ रही हैं। वहां जमीन के लेन देन का मसला चल रहा था कि 2 करोड़ की जमीन को आपने 18.5 करोड़ में बेच दिया। वहां पे जो स्पेशल दर्शन हो रहे थे उसमें घूस खाई जा रही थी। क्या ये रिक्रूटमेंट का काम, ये 8 लोग जो गिरफ्तार हुए, क्या ये लोग जिम्मेदार थे? रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था, किसके कहने पर रिक्रूटमेंट हो रहा था? जो जिस एजेंसी को हायर किया गया, सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया गया, क्या उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में कौन बात करेगा? तो सिर्फ चढ़ावा चोरी का प्रश्न नहीं, मैं मान सकता हूं चढ़ावा चोरी में चोरी हुई, मान लिया मैंने, लेकिन जब 2020-21 में महिपाल सिंह ने कहा चोरी हो रही, चंपत जी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब ऑडिट ने एजेंसी ने कहा कि इसमें SOP
1: बनाया, दैट इज व्हाई ही इज रिजाइंड, हर्षवर्धन जी सेइंग दैट इज व्हाई ही इज रिजाइंड।
3: लेट मी टेल यू फिर उसके बाद जमीन घोटाले का प्रश्न आया, SIT गठित हुई, SIT की रिपोर्ट कहां है किसी को नहीं मालूम, नोबडी नोस अनटिल दिस डेट, किसी को नहीं मालूम कि चंपत राय का इस्तीफा है कहां, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया भी है या नहीं दिया। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से राम मंदिर के मामले में, चाहे रिक्रूटमेंट का सवाल हो, चाहे जमीन का प्रश्न हो, चाहे चाहे स्पेशल दर्शन का प्रश्न हो, ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा था।
1: ऑर्गेनाइज्ड बाय हु? आर यू सेइंग दैट चंपत राय ऑर्गेनाइज्ड इट?
3: बिना बड़े लोगों की मिलीभगत से यह संभव ही नहीं था। रिक्रूटमेंट का काम टिन्नू यादव नहीं देख सकता, रिक्रूटमेंट का काम उस जो श्रीवास्तव वो नहीं देख सकता, जो बैंक एम्प्लॉई है, उन्होंने गणना में चोरी की होगी, मैं मान सकता हूं उसको। रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था? स्पेशल दर्शन के लिए पैसे कौन खा रहा था? जमीन का घोटाला कौन कर रहा था?
2: अंजय जी, सबसे पहले तो आशुतोष जी अगर कुछ हमें कह भी देंगे तो मैं उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो छोटा भाई कह रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, तथ्य पर हम बात करेंगे, तीखे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बिना संकोच के एक बात कह दूं कि आशुतोष जी ने सिर्फ खबरों को पढ़ लिया, जानकारी नहीं ली। जैसे किसी ने कह दिया कि चंपत राय 400 गार्ड के साथ चलते थे, अब चूंकि मैं तो शिलान्यास के पहले, शिलान्यास के समय 1 हफ्ते, प्राण प्रतिष्ठा के समय 1 हफ्ते और दर्शन लगातार मैं करता रहा, कोई ये नहीं कह रहा है कि वो एजेंसी कौन सी है। भाई चंपत राय जी ने कोई ऐसी एजेंसी नहीं रखी है, वो एजेंसी अलग अलग संस्थानों में काम करती है, ऐसी एक एजेंसी वहां भी है। बाकायदा जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के जरिए है, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं करती, पहले तो ये जानना चाहिए। नंबर एक, वो जो 400 वाला आंकड़ा है ये आशुतोष जी को

0: के स्मूथ व्यवस्था है कि आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं, वहां कौन आदमी है इतना जो 25,000 रुपए स्पेशल दर्शन कर दे? किसी ने कह दिया, उसको लेके चले गए, कौवा कान ले गया, पता नहीं चला। चढ़ावा चोरी में गड़बड़ हुई है, उस पर जांच होनी चाहिए। और हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही 8 लोग हैं, मैं कह रहा हूं और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा? हम और आशुतोष जी टीवी पर आपके साथ डिबेट करेंगे, इससे पता चलेगा? ये तो जांच से ही पता चलेगा ना।
1: और लोग कौन है? वही तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड टुडे, व्हिच पुलिस पर्सन विल हैव द गट्स टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ चंपत राय?
0: पद्मजा जी, चंपत राय से 8 घंटे
1: चंपत राय जी को बोली दिया है कि आपके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस है, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अब कौन पुलिस वाला जाकर के कहेगा कि भाई चंपत जी को मिली भगत हो सकता है?
0: चंपत राय जी से और अनिल मिश्रा से 8 घंटे की पूछताछ हुई है, और ये हम ही लोगों ने चलाया, बाकायदा एसआईटी की टीम उनसे पूछताछ करके आई, और जो पूछताछ करके आई वही रिपोर्ट में है। अब जो रिपोर्ट का एक्सटेंशन किया गया, क्यों किया गया? पहले तो रिपोर्ट आ जानी थी ना, क्यों उसको समय बढ़ाया?
1: अगर उनसे
0: क्योंकि उसको और जांच करनी
1: की गई है, तो यानी कि वो भी शक के घेरे में,
0: निश्चित तौर पर
1: अगर वो शक के घेरे में है, तो उनके लिए इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है?
0: नहीं, देखिए पद्मजा जी, मैं फिर कह रहा हूं, हम आप वही भाषा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गोविंद देव गिरी जी क्या भाषा इस्तेमाल करेंगे अपने सहयोगी के लिए या चंपत राय जी के लिए, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं?
1: सर, पर अभी तो कुछ टिन्नू यादव के खिलाफ भी नहीं
0: उन्होंने क्या
1: तो कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं किया कि आपने अरेस्ट हो करके बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया।
0: दोनों में बड़ा फर्क है, बहुत अंतर है पंजा जी। टिन्नू यादव एक ऐसा कर्मचारी जो वहां जाता है और जिसने विश्वासघात किया है, या लवकुश मिश्रा, या वो क्या नाम है श्रीवास्तव,
1: आशुतोष तो कह रहे हैं कि किसी और की मिलीभगत के साथ विश्वासघात,
0: तो किसी और को खोज
1: के लिए थोड़ा विश्वास,
0: ये आशुतोष जी को या हमें कैसे पता लगेगा?
1: सर, टिन्नू यादव को वॉकी टॉकी किसने दिलाया? क्या किसी की हिम्मत है कि एक ऐसे ही आदमी को, कोई रैंडम आदमी को, वो अपना पुलिस का वॉकी टॉकी दे दे?
0: रैंडम आदमी नहीं है ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, दो चीजें हैं, क्या वो उसमें शामिल थे या उनका इग्नोरेंस था, और इग्नोरेंस था तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस था या क्या था, ये कैसे तय होगा? ये जांच से तय होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि चंपत राय जी को सिर्फ इसलिए निशाना लगाना कि एक आदमी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, एक आदमी राम मंदिर के पूरे निर्माण में जुड़ा रहा, वो संघ का प्रचारक रहा, इसलिए आप निशाना लगाकर कहीं और साधना चाहते हैं, तो ये तो संभव नहीं होगा। और फिर सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, और वो मतलब अपनी तरफ से अगर भरोसा दे रहे हैं, तो या तो आप ये कह रहे हैं सरकार पर भरोसा नहीं, तो क्या ईडी सीबीआई की जांच कराएंगे? तो वो नरेंद्र मोदी के अंतर्गत आती है, तो कहां जाके जांच रुकेगी, ये भी बताना चाहिए।
1: लास्ट वन मिनट आशुतोष।
2: देखिए, अब विनय कटियार को तो मैं नहीं बोलूंगा कि संघ विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है या हिंदू विरोधी है, या मैं नृपेंद्र मिश्र को तो नहीं बोलूंगा, भाई विनय कटियार तो खुलेआम नाम ले रहे हैं चंपत राय का, सरोज जो है दूसरे दुबे जी, वो तो खुलेआम नाम ले रहे हैं, जो जो संघ से जुड़े हुए लोग वही नाम ले रहे हैं, और कुछ हमारे पत्रकार मित्र में जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रहे, तो खुलेआम नाम ले रहे हैं चंपत राय का। सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब 2020-21 में महिपाल सिंह ने इस बारे में जानकारी दी, क्यों नहीं चंपत राय ने कार्रवाई की उसके खिलाफ? उसके बाद जब जमीन घोटाले का प्रश्न आया, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मेरी 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेची जा रही, ट्रस्ट को बेची जाए 10 मिनट के अंदर, क्यों नहीं कार्रवाई की उन्होंने? और एक ड्राइवर खुलेआम उसकी उसकी उसकी वो अंदर बाहर हो रहा है और काउंटिंग के अंदर अंदर बाहर जा रहा, मतलब ये मैं तो कहता हूं कि अगर अभी तक कोई दूसरी सरकार होती तो चंपत राय को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता, जेल चले गए होते वो।
1: ओके,
2: लेकिन चूंकि यहां पर चंपत राय जी हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं चंपत राय से कभी नहीं मिला हूं, राम मंदिर के आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन जो ये लालच है, ये कब मनुष्य का दिमाग बदल देती किसी को नहीं मालूम।
1: ओके, यू आर आस्किंग फॉर एक्शन, एक्शन हैज बीन टेकन, वेदर इट्स सैटिस्फैक्टरी और सफिशिएंट और नॉट, आई विल लीव इट टू द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, बट आई सस्पेक्ट दिस इज अ डिबेट दैट विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एज वेल। हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।
3: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
4: I'm delighted to be a chairman of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
5: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
6: I think it's also important that how they are reshaping the industries, commercial activities which they are into. And it's a very judicious mix of people to choose from. My compliments to the team.
3: Who will earn India's top business honors?

0: महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
1: जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।
2: जो भी दोषी पाए जाए उन्हें कड़े से कड़ा दंड मिले और किसी को भी लिहाज न किया जाए। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद श्री चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने जांच निष्पक्ष हो सके और निष्पक्ष होती हुई दिखे, इसके लिए अपने पदों से त्यागपत्र दिया था। उनकी भावना का आदर करते हुए ट्रस्टियों ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।
3: श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर जो घटना घटी है, ये करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का विषय है और करोड़ों लोगों का विश्वास कायम रहे, करोड़ों लोगों की श्रद्धा, आस्था और उनका भरोसा कायम रहे, तो इसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और अयोध्या तो वो धरती है जो हर वक्त अग्नि परीक्षा मांगती है। जहां सीता मां की भी अग्नि परीक्षा हुई, तो ट्रस्ट की अग्नि परीक्षा भी होनी चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं।
4: And cutting across to other big stories that we are tracking on this edition, and this one has created a big talking point across the country. This is about Diljit Dosanjh's latest movie, Satluj. After years of delays and controversies, Diljit Dosanjh's long-awaited film, Punjab 95, which was later released on Z5 under the new title Satluj, has been taken down from streaming platform in India. And this happened just 2 days after its release. Now, as per sources, the decision to take down Satluj was taken after a careful review. The film had earlier applied for a theatrical release but was not approved in the form in which it was submitted. Sources say that the concerns were raised over certain portions of the film. Diljit Dosanjh has now broken silence, since he is the main protagonist of the movie, on the ban, with a cryptic social media post saying, and I quote, "I challenge the darkness." He also said that now the film will not be stopped and Kalra's voice cannot be silenced. Meanwhile, what's also happened is that advocate Vineet Jindal has now approached the Ministry of Home Affairs, alleging that the film spreads misinformation and promotes sympathy for terrorism. Here is what Diljit Dosanjh has to say on the full controversy.
5: Shukrawar nu hi pata si ve shayad edda ho sakdi hai, jehdi gal mere already dimag si. तो कोई शौक वाली गल नहीं, जेड़ा लगता ही सी भी यस, मैनू लगता सी भी मंडे जब दफ्तर दफ्तर खुल खुलणगे उदों शायद जिहड़ी फिल्म बैन की जाऊगी। पर संडे शाम नूं ही हो जूगे इहदा कोई आइडिया नहीं सी। पर इन्ना क मैनू सीगा इस करके मैं शायद ये गल कल कर भी दित्ती सी डे वन तो ही सीगा इसे करके फिल्म की प्रमोशन भी नहीं कर सके इसे करके बिना दसे किसी नूं फिल्म नूं रिलीज़ किया जे दस के रिलीज़ करते दो दिन पहला प्रमोट करते फिर तो फिर नहीं सी लगनी पर हुण मैनू इस गल की तसली है कि फिल्म जिहड़ी घर घर पहुँच चुकी है थोड़े कोल आ फिल्म लोगों ने फिल्म डाउनलोड भी कर ली है ते आज जिहड़े हुण नवा यूथ आ वह फिल्म की गल भी कर रहा है।
4: And even as the controversy surrounding Satluj continues, the film has found an unexpected audience in rural Rajasthan. Watch this visual where Anupgarh district, an entire village, came together for a community screening on a giant screen with locals saying that the film's message on justice and human rights should reach more people. The event has now gone viral after actor Diljit Dosanjh shared pictures and videos from the screening on social media, reigniting the debate over the film and the calls to ban the lift.

0: त्याग पत्र प्रदान किया है। और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपतराय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। यह सोच करके उन्होंने स्वयं यह त्यागपत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
1: जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।
2: जो भी दोषी पाए जाए उन्हें कड़े से कड़ा दंड मिले और किसी को भी लिहाज न किया जाए। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद श्री चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने जांच निष्पक्ष हो सके और निष्पक्ष होती हुई दिखे, इसके लिए अपने पदों से त्याग पत्र दिया था। उनकी भावना का आदर करते हुए ट्रस्टियों ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।
3: श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर जो घटना घटी है, ये करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का विषय है और करोड़ों लोगों का विश्वास कायम रहे, करोड़ों लोगों की श्रद्धा, आस्था और उनका भरोसा कायम रहे, तो इसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और अयोध्या तो वो धरती है जो हर वक्त अग्नि परीक्षा मांगती है। जहां सीता मां की भी अग्नि परीक्षा हुई, तो ट्रस्ट की अग्नि परीक्षा भी होनी चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं।
4: And cutting across to other big stories that we are tracking on this edition, and this one has created a big talking point across the country. This is about Diljit Dosanjh's latest movie, Satluj. After years of delays and controversies, Diljit Dosanjh's long-awaited film, Punjab 95, which was later released on Z5 under the new title Satluj, has been taken down from streaming platform in India. And this happened just 2 days after its release. Now, as per sources, the decision to take down Satluj was taken after a careful review. The film had earlier applied for a theatrical release but was not approved in the form in which it was submitted. Sources say that the concerns were raised over certain portions of the film. Diljit Dosanjh has now broken silence, since he is the main protagonist of the movie, on the ban, with a cryptic social media post saying, and I quote, "I challenge the darkness." He also said that now the film will not be stopped and Kalra's voice cannot be silenced. Meanwhile, what's also happened is that advocate Vineet Jindal has now approached the Ministry of Home Affairs, alleging that the film spreads misinformation and promotes sympathy for terrorism. Here is what Diljit Dosanjh has to say on the full controversy.
5: Shukrawar nu hi pata si ve shayad edda ho sakdi hai, jehdi gal mere already dimag si. तो कोई शौक वाली गल नहीं, जेड़ा लगता ही सी भी यस, मैनू लगता सी भी मंडे जो दफ्तर दफ्तर खुलणगे उदों शायद जिहड़ी आ फिल्म बैन की जाऊगी, पर संडे शाम नू ही हो जूगी इहदा कोई आइडिया नहीं सी। पर इन्ना क मैनू सीगा, इस करके मैं शायद ये गल कल कह कर भी दित्ती सी, ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
4: And even as the controversy surrounding Satluj continues, the film has found an unexpected audience in rural Rajasthan. Watch this visual where Anoopgarh district, an entire village, came together for a community screening on a giant screen, with locals saying that the film's message on justice and human rights should reach more people. The event has now gone viral after actor Diljit Dosanjh shared pictures and videos from the screening on social media, reigniting the debate over the film and the calls to ban the lift.

0: place today. Let's take a look at some of them.
1: हमारे महामंत्री महोदय ने और महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपताय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
2: जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।
3: जो भी दोषी पाए जाए उन्हें कड़े से कड़ा दंड

हर वक्त अग्नि परीक्षा मांगती है। जहां सीता मां की भी अग्नि परीक्षा हुई तो ट्रस्ट की अग्नि परीक्षा भी होनी चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं।

0: in South Delhi's upscale Lodhi colony. It doesn't get more central than that. Akriti was a young professional working as a sales executive. Hours before her death on Saturday evening, she had actually attended her office and even hosted a small post-wedding celebration for her colleagues. Her mother and family have since come forward with horrific allegations of relentless domestic abuse and belt beatings by her husband, Arastu Sikka. They claim she was constantly taunted for not bringing enough from her parental home alongside a brutal demand for 20 lakh rupees in dowry. While the police are investigating digital evidence and search history for a suicide angle, her family strongly maintains she was mentally strong and rejects anything other than their daughter being murdered. What makes this tragedy sting even sharper is that it comes in the heart of the national capital, mere weeks after the country was shaken by the case of actor-model Twisha Sharma, like I said, in Bhopal. Twisha was found dead just 6 months into her marriage to a lawyer whose mother happens to be a retired district judge. When you look at the raw numbers, the reality is staggeringly bleak, and I'm repeating these numbers for the second time in less than 2 months. National Crime Records Bureau data shows that India recorded 5,737 dowry deaths in 2024 alone, the last year for which that data exists. That translates to an average of 16 women dying every single day in our country because of marital harassment and financial greed over dowry. The terrifying truth these back-to-back tragedies reveal is that dowry is completely and utterly entrenched across every stratum of Indian society. Akriti and her husband had been in a relationship for 8 years before their love marriage on April the 24th. We love to believe that childhood friendships, long-term love stories, and deep family associations offer some kind of immunity, a shield. We think if people truly know each other, their families know each other, they are insulated from this malice. But these cases prove that the moment the wedding festivities end, a dark switch flips. No amount of prior love or generational familiarity seems to protect women like Akriti from the transactional nature of greed. There was Twisha, now it's Akriti. And there are statistics now, like the 15 others that died the same day and for the same reason that they did. Here are some big questions that I need to ask tonight, because the death of Akriti Sutar is not just any other death. Akriti had informed her mother that she had left from office to home on Saturday, the evening that she actually died. The same day she had hosted a party for her colleagues in the office to celebrate her wedding, which had taken place 2 months before. Soon after, Akriti's phone was switched off after she spoke to her mother. Her husband, Arastu Sikka, accused Akriti's family of hiding her during their marital time. Akriti was found lying on the ground, lifeless, in Lodhi colony after apparently falling from the third floor. Her family say she was pushed. She was rushed to the Ames Trauma Center, where she was pronounced dead. Injuries were found on Akriti's left arm and thigh. The family has completely rejected the suicide claim, and they have accused the husband of murder. So the big questions I am asking tonight are, why no bloodstains where Akriti's body was apparently found? This has been documented. Why would Akriti die by suicide if she threw a party just hours before that in her office to celebrate her wedding? What explains the injury marks on Akriti's body? Akriti spoke to her mother just 2.5 hours before the death. What happened in those final hours? These are questions that will be a matter of investigation, because, like I said, Akriti Sikka died on Saturday, just 2 days ago. I'm joined now by Amay Sutar, who is Akriti's brother. And he joins me live now from the national capital. Amay, ये एक बहुत मुश्किल दौर है आपके लिए और आपके परिवार के लिए. तो पहले मैं आपको मेरे ये बहुत दुखद घटना है और मैं अपने कंडोलेंसेस कन्वे करता हूँ आपको और आपके परिवार को. मेरा पहला सवाल है हमें कि सैटरडे को क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्या आप बता सकते हैं? आकृति ऑफिस गई थी उस दिन, कुछ सेलिब्रेशन भी था उसके ऑफिस में, उसके बाद माँ से बात हुई थी, क्या आप बता सकते हैं डिटेल में क्या हुआ था उस दिन?
1: एक्चुअली सर, उस दिन जो मॉर्निंग में मेरी सिस्टर जो है वो ऑफिस के लिए निकली थी. मेरी सिस्टर को एक्चुअली ऑफिस 3 मंथ बाद उसने अपने ऑफिस को कंटिन्यू किया था. तो जब फर्स्ट डे वो 1 तारीख को ऑफिस गई थी, तो उसने पार्टी देने की सोची थी ऑफिस में. तो उसने बोल भी रखा था कि मैं आप सबको पार्टी दूंगी अपने मैरिज की. तो मेरा मानना ये है कि अगर वो ऑफिस, हाँ एक्चुअली वो सुबह सुबह मॉर्निंग में जब ऑफिस निकली, तो उसने मेरी मदर को फ़ोन करके बोला कि मेरी मम्मी को कि मैं ऑफ़िस के लिए निकल चुकी हूँ और मैं पहुँच गई हूँ मतलब ऑफ़िस के लिए, ऐसे बोला उसने. फिर फ़ोन कट किया. फिर इवनिंग में उसने पार्टी दी. बट मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी अपने कलीग्स को अगर कोई भी वादा कर चुका है कि मैं पार्टी दूंगा या कुछ भी है, तो उसके दिमाग में जो भी चल रहा हो पहले से, तो वो फिर भी अंदर मतलब अपने घरेलू दिक्कत या फिर अपने अंदर की चीज़ें की कोई भी प्रॉब्लम है उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं करता. जैसे मैं भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता. तो मेरी सिस्टर भी उस टाइम क्यों करती? और मेरी सिस्टर ने अगर वहाँ पार्टी दी, इसका मीन ये नहीं बनता ना कि वो खुश थी या फिर उसका उसकी मेंटली कोई प्रेशर नहीं था. ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि सब अपना अपना प्रेशर अंदर रखते हैं, कोई बाहर एक्सप्रेस नहीं करता. और रही बात मेरी जो सिस्टर है, उस दिन उसने पार्टी दी और इवनिंग में जब वो ऑफिस से 6 बजे निकली, 6:18 पे उसने मेरी मम्मी को कॉल किया और बोला कि मम्मी मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ, मैं अभी फ़िलहाल निकल के बैठ गई हूँ, मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, मीन अपने ससुराल जा रही हूँ. बट उसके ही एक घंटे बाद करीबन हमारे पास कॉल आया कि आधे एक घंटे बाद कि आपकी बेटी कॉल नहीं उठा रही. उसके कुछ देर बाद मेरी मम्मी ने मेरे को कॉल किया, मैं ऑफिस में था, तो बोला कि आकृति मतलब कि बेटा कॉल करो, आपकी मतलब बहन जो है कॉल नहीं उठा रही है, उसको कॉल करो उनको. मैंने बोला ओके मैं कॉल करता हूँ. तो मैंने कॉल किया तो तब भी कॉल नहीं लग रहा था उसका. हमने फिर उसको करीबन एक घंटे तक ट्राई किया. फिर मैं घर गया, फिर घर जाके उसके ऑफिस वगैरह के पेपर वगैरह निकाले, सब जगह ट्राई किया, सब जगह सर्च किया, उसके ऑफिस में भी बाहर भी. हमारे सारे फ्रेंड्स जो थे हम सर्चिंग में लग गए. तो करीबन 10 बजे के आसपास, 9:30 से 10 के बीच में हमने एक लास्ट कॉल ट्राई करी आखिरी, मतलब मेरे सिस्टर के फ़ोन पे मेरे फ्रेंड ने. जब लास्ट कॉल उन्होंने ट्राई करी तो तब पता चला कि ये जो कॉल है वो पिक करी गई थी लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में. और जब लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कॉल पिक करी गई, तो उन्होंने बताया कि आपकी सिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आप जो है लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन आ जाइए. हम लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन जैसे ही पहुँचे, तो उन्होंने हमें ये बताया कि आपकी जो सिस्टर है उन्होंने 3rd फ्लोर से कूद के सुसाइड करने की कोशिश करी और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है. और बाकी कोई भी इसके अलावा कोई भी हमारे पास खबर आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे. उसके करीबन 1 घंटे तक हमको कुछ नहीं बताया गया. 1 घंटे बाद जब उनके जो हस्बैंड थे अरस्तु, वो जब पहुँचे, उनसे जब पहुँचने के बाद कुछ पूछताछ उनने करी रूम में बिठा के, पूछताछ करने के कुछ देर बाद हमको बताया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे. फिर उसके बाद हमें जब बताया गया, तो तब मतलब हम कुछ सोचने की हालत में नहीं थे, कि कुछ कहने की हालत में थे, तब हम कुछ नहीं कर सके.
0: आपका कहना है हमें कि ये सुइसाइड नहीं था, ये मर्डर था, आपका परिवार ये कह रहा है, ऐसा क्यों है? और पिछले 2-3 महीने में ऐसा कुछ सामने आया था कि कुछ डाउरी को लेकर कुछ हैरेसमेंट था, कुछ मांगे थी इस परिवार का?
1: देखो सर, मैं क्लेरिफाई करता हूँ आपको कि एक्चुअल में जो मेरी सिस्टर थी वो पहली बात तो इतनी मेंटली स्ट्रांग थी कि वो कभी भी सुसाइड अटैम्प्ट नहीं कर सकती. मैं मानता हूँ कि चलो अगर पहले भी ना हो, बट लाइफ के साथ साथ इंसान की अंदर के मेंटलिटी से लेके स्ट्रांगनेस सब चेंज होती है. क्योंकि मेरी सिस्टर और मैंने 7 ईयर्स से अपना घर संभाला था जब हमारे पापा यहाँ से चले गए थे, इस दुनिया से एक्सपायर हो गए थे. हमने सब चीज़ें हैंडल करी थी साथ में मिलके, तो इतने हम मेंटली स्ट्रांग हो चुके थे कि हम ये सब उल्टी सीधी कदम नहीं उठाएंगे. और दूसरी बात यह है कि मेरी जो सिस्टर है उसको 2.5 महीने से उनके जो ससुराल वाले हैं वो हरदम ये उनको ब्लेम किया करते थे, उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड की जो सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड की जो सिस्टर हैं वो, कि आप अपने घर से तू अपने घर से कुछ भी लेके नहीं आई।